एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के अषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां

0: भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। चिंतन।

क्रोध से मूढ़ता पैदा होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है। स्मृति भ्रांत होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश होने से विनाश होता है। इसलिए केवल क्रोध पर नियंत्रण करने से

हर इंसान में परमात्मा के गीत, परमात्मा की सत्ता, परमात्मा का चेतन और परमात्मा का आनंद छुपा है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का भाग 130।

प्रस्तुत है रामचरितमानस के बाल कांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः की 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, प्रातः 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी में आज विशेष के साथ जानकारी देंगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर। साथ ही जानकारी देंगे महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्य तिथि पर। 7:40 का समय रहेगा कार्यक्रम शुभ प्याग का। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे गाने सुहाने। कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे प्रातः 9:00। प्रातः 10:00 कार्यक्रम गीतों का कारवां सुनवाया जाएगा। दस बजकर 30 पर कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में सुनिएगा कुछ लोक संगीत।

0: 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। 11:30 पर जय हिंद गीत माला प्रसारित की जाएगी। दोपहर 12:00 समय रहेगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे कुछ भजन। 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। 6:05 पर कार्यक्रम सुरमई सांझ प्रसारित की जाएगी। 6:30 पर 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम किसान वाणी। 8:00 विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा। 9:15 पर कार्यक्रम हिम दर्शन आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र भारती और 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20 11:00 3:00 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 9:00 दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, 1:00 5:00 7:00 और 11:00 हिंदी में समाचार, 1:05 5:05 7:05 और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओ, ये थी रूपरेखा हमारे आज के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथि रूपेण उपस्थितः भविष्यति। 15-2000 वर्षात् अनन्तरम् इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटक यान सेवायाः शुभारंभं करिष्यति।

0: सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः 4,000+ सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य 14 जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामी मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवा विस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमंत्री अमित शाह गतवासरे मादक द्रव्याणि विरुध्य संयुक्त संघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादक द्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रिय सुरक्षायै, सामाजिक स्थिरतायै, आर्थिक हिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिक नेत्रीन, यूनः, मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्री शाह नवदिल्ल्यां मादक द्रव्य विषयक संयोजन केन्द्रस्य दशम शीर्षस्तरीय सभां संबोधयन् एवं अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: उत्तर प्रदेश आरक्षिबलेन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण 8 जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमंत्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पंजीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां उपहाराणां दानानां च वंचना सम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमंत्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्ट निरीक्षण दलस्य संघटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तु विज्ञान विभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वीयोत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपय क्षेत्रेषु च तडित्पातस्य संभावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा 16 संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय सहकारिता

मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। 7वां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी के इस अंक के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियां, साथ ही साथ करते हैं आपका मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आज के विचार के साथ। श्रोताओं, जीवन में सुख पाने का सबसे सरल तरीका है कम अपेक्षाएं।

और अधिक आभार। दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना सीखिए। जब सोच सुंदर हो जाती है तब दुनिया भी सुंदर दिखाई देने लगती है। सूरज हर दिन बिना थके प्रकाश देता है, इसी तरह हमें भी बिना रुके अपने कर्म करते रहना चाहिए। और हम भी अपना अगला काम करेंगे और वो है आपका मनोरंजन, और करेंगे इस प्यारे से गीत के साथ आपका मनोरंजन।

0: 27 जून 2002 में G8 परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजनाओं पर सहमत हुए थे। आज ही के दिन 27 जून 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका में समलैंगिकता पर प्रतिबंध रद्द हुए थे। सत्ताईस जून 2004 में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने जेपीएस गैलीलियो के विकास में सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन 27 जून 2005 में ब्रिटेन ने भारत की वीटो रहित स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। सत्ताईस जून 2008 में भारत व पाकिस्तान ने ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना को चालू करने के लिए आ रही रुकावटों को हल किया। सत्ताईस जून 2015 में भारत के फिल्म इतिहास में अपना खास मुकाम रखने वाले सत्यजीत रे की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने अपने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला किया था। आज ही के दिन 27 जून 1964 में भारतीय खिलाड़ी पीटी उषा का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1950 में हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध भारतीय गायक नितिन मुकेश का जन्म हुआ। और आज ही के दिन 27 जून 1939 में हिंदी फिल्मों के संगीतकार राहुल देव बर्मन का जन्म हुआ। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और जानकारियां तो हम आपसे और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।
1: हाँ? क्या कहा?

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर। श्रोताओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सतत विकास, नवाचार और रोजगार सृजन में इन उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना और बढ़ावा देना है। वैश्विक स्तर पर MSME लगभग 90% व्यवसायों, 60-70% रोजगार और कुल 50% GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में इस दिवस को आधिकारिक रूप से नामित किया था। भारतीय MSME क्षेत्र को भारत की आर्थिकी की रीढ़ माना जाता है। ये स्थानीय कारीगरों से लेकर बड़े विनिर्माण क्षेत्रों तक फैले हुए हैं और करोड़ों आजीविकाओं का समर्थन करते हैं। इस दिन सरकारी और गैर सरकारी संस्थान MSME को डिजिटल अपनाने, ऋण तक पहुंच और कौशल विकास के लिए जागरूक करते हैं। और कार्यक्रम में अब एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे महाराजा रणजीत सिंह की पुण्य तिथि पर। श्रोताओ, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में गुजरवाला में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जून 1839 में लाहौर में हुई। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे। वे शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराजा रणजीत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीवित रहते हुए अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी फटकने नहीं दिया। 12 अप्रैल सन 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। गुरु नानक के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई थी। उन्होंने लाहौर को अपना राजधानी बनाया और 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया।

ब्रिटिश इतिहासकार जेटी व्हीलर के अनुसार अगर वह एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतेह कर लेते। महाराजा रणजीत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पंजाब में कानून एवं व्यवस्था कायम की और कभी भी किसी को सजाए मौत नहीं दी।

और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में समय हो रहा है समाचारों की सुर्खियों का। श्रोताओं, भूकंप से तबाह वेनेजुएला में अब तक 589 मौतें हो चुकी हैं। कमजोर मॉनसून ने बढ़ाई किसानों की चिंता। फीफा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जर्मनी को हराकर इक्वाडोर ने रचा इतिहास। भारत और आयरलैंड के बीच पहले T20 मैच में आयरलैंड ने

भारत को हराकर बड़ा उलटफेर किया। और अब जानकारी देते हैं आपको मौसम की। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में आज का अधिकतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और कार्यक्रम में अब चलते चलते एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:40 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम शुभ प्याग का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्याग, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:55 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और

0: स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान

0: माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गाँवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
4: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ।

0: करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में दो बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म मैंने दिल तुझको दिया का ये गीत फैज़ अनवर और अलका याग्निक की आवाज़ों में। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म कोई आपसा का ये गीत सोनू निगम और हिमेश रेशमिया की आवाज़ों में।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आनंद मिलंद के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए फिल्म नाम गुम जाएगा। ये गीत गाए कलाकार हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल।

0: दोस्तों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम गाने सुहाने यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने सुहाने। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9 बजे और अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम गीतांजलि के इस अंक के साथ और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। दोस्तों, कहते हैं इंसान की आंखें उसकी जुबान से भी ज्यादा सच बोलती हैं। खुशी हो, गम हो, उम्मीद हो या प्यार, हर एहसास सबसे पहले आंखों में ही दिखाई देता है। एक सच्ची मुस्कान तभी पूरी लगती है जब वह आंखों तक पहुंच जाए। इसलिए अपनी आंखों में हमेशा सपने, उम्मीद और अपनापन बनाए रखिए, क्योंकि खूबसूरत आंखें सिर्फ दुनिया को नहीं देखती बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल देती हैं।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए विशाल ढडलानी और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म दोस्ताना का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ लोगों के आने सिर्फ एक मुलाकात नहीं होती, बल्कि पूरी ज़िंदगी ही बदल देती है। किसी का साथ मुश्किल राहों को आसान बना देता है और उसकी मौजूदगी हर दिन को खास बना देती है। शायद इसी एहसास को शब्द मिले हैं, तुम जो आए। जब कोई अपना दिल के करीब होता है तो हर पल में एक नई उम्मीद, नई मुस्कान और नई खुशी शामिल होती है। तो इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ सुनिए ये एक बेहद प्यारा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये जवानी है दीवानी का ये प्यारा संगीत शिल्पा राव और श्री रामचंद्र की आवाजों में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि यूं ही जारी रहेगा। प्रातः 9:30 पर भी आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: सम्मान सहित जीवन चले,
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बड़ा भंगाल के दौरे पर। 14 वर्षों के बाद कोई मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में हिमाचल पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर। केंद्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में सराहा गया प्रदेश का सड़क निर्माण। सरकारी भर्तियों में चिट्टा टेस्ट अनिवार्य, जल्द बनाए जाएंगे तकनीकी पैरामीटर। आज नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक होगी आयोजित, क्षेत्र में विकास के अलावा आपदा प्रबंधन प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में भाजपा का सरकार पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, आज सभी जिलों में करेंगे धरना प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां हाल ही में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे तथा स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। अपर बड़ा भंगाल गांव में स्थित माइक्रो हाइडल परियोजना के निरीक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का आज बड़ा भंगाल में ही रुकने का कार्यक्रम है। वे कल बड़ा भंगाल से शिमला लौटेंगे। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में किसी भी मुख्यमंत्री ने इस दुर्गम क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि दौरे का मुख्य उद्देश्य इस दुर्गम क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को करीब से समझना और सरकार इस क्षेत्र में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा सके, इसलिए ये यात्रा जरूरी है। उन्होंने कहा कि बड़ा भंगाल की कठिन परिस्थितियों को मौके पर जाकर ही बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2025-26 की गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद विकास और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि राज्य में निरीक्षण की गई 1029 सड़क परियोजनाओं में से मात्र 3.8% कार्य ही कम गुणवत्ता के पाए गए, जो अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण, कड़ी जवाबदेही और उच्च गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के कारण ये सफलता मिली है। प्रदेश में भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा, जिसके

0: ये तकनीकी पैरामीटर बनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर ये जानकारी देते हुए प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के पंत ने बताया कि सरकार चिट्टे के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है और तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने की प्रक्रिया जारी है। इस अभियान में उपायुक्तों सहित अधिकारियों का भी एंटी चिट्टा टेस्ट के आधार पर आकलन करने का निर्णय लिया गया है।
1: दो चीज़ें की जा रही हैं, एक जो भी भर्ती होगी सरकार में, जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। दूसरा ये भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी हैं उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को उस तरह से नंबर दिए जाएंगे।
0: आम लोगों तक सरल और सुलभ न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए समाधान समारोह विशेष लोक अदालत के तहत लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटाया जा रहा है। 21 अप्रैल से जारी इस महाअभियान के तहत वर्तमान में राज्य, जिला व उच्च न्यायालयों में विधिक सेवा प्राधिकरणों और मध्यस्थता केंद्रों में बेसुलह बैठकें आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण पहल का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों का सुलह व समझौते के जरिए त्वरित समाधान करना है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन लिए जा रहे हैं। इस महाअभियान का समापन 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत के साथ होगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNewsShimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज नव निर्वाचित 3,758 पंचायतों की पहली बैठक आयोजित होगी, जिसमें प्रधान और उप प्रधान सभी वार्ड सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एजेंडों के अनुसार आज पंचायतें अपने अपने क्षेत्र में सड़क संपर्क, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल व सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के साथ आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव भी तैयार करेंगे। मानसून को देखते हुए भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक तैयारियों पर भी चर्चा होगी। प्रदेश भाजपा ने पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में कांग्रेस सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि जिला परिषद, BDC तथा नगर परिषदों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव काफी पहले संपन्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार जानबूझकर इन चुनावों की तिथियां घोषित नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार इस देरी का उपयोग हॉर्स ट्रेडिंग और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रभावित करने के लिए करना चाहती है। भाजपा इस पूरे घटनाक्रम पर आज प्रशासन से तत्काल अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथियां घोषित करने की मांग को लेकर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश भर में कल रविवार 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान में 5 वर्ष तक की आयु के 5,94,000 से अधिक बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इस अभियान के लिए प्रदेश में 4,753 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इन दिनों भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता में सीमा ने 5,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कल 28 जून को इस प्रतियोगिता में सीमा 10,000 मीटर की दौड़ में भी भाग लेगी। सीमा के बेहतर प्रदर्शन से उनका जापान में होने वाली एशियन गेम्स के लिए चयन हो गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद प्री मानसून का असर देखने को मिला। शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई, जबकि मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना में उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ी है। आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हैं और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इस दौरान ऊंची चोटियों में बर्फबारी की भी संभावना है। विभाग के अनुसार मॉनसून 5 दिनों की देरी से चल रहा है और जुलाई माह की शुरुआत में प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, रामपुर में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, मां बेटे समेत

0: छह की मौत। पंजाब केसरी के शब्द है, फेसबुक पर लाइव थी महिला, चालक ने नियंत्रण खोया और पिकअप खाई में गिरी, छह की मौत। शिक्षकों को 2028 तक पास करना होगा टेट, नहीं तो जाएगी नौकरी, शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग सख्त, दिव्य हिमाचल के शब्द है, हिमाचल में भी 2028 से पहले पास करना होगा टेट। हिमाचल दस्तक के अनुसार सीएम ने चंडीगढ़ में मांगी हिमाचल के हक की 7.19% हिस्सेदारी, चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, चार जिलों में प्री मानसून की झमाझम बारिश, मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बरकरार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बड़ा बंगाल के दौरे पर, 14 वर्षों के बाद कोई मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दुर्गम क्षेत्र के दौरे पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में हिमाचल पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर, केंद्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में सराहा गया प्रदेश का सड़क निर्माण। सरकारी भर्तियों में चिट्टा टेस्ट अनिवार्य, जल्द बनाए जाएंगे तकनीकी पैरामीटर। आज नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक होगी आयोजित, क्षेत्र के विकास के आपदा प्रबंधन प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में भाजपा का सरकार पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, आज सभी जिलों में करेंगे धरना प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म वक्त का ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बजे हैं और अब समय है कार्यक्रम गीतों का कारवां का।

गीतों का कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और श्रोताओं, आज मैं हूँ आपके साथ रीना। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सोनू निगम के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म तुम बिन से। गीत के लिए संगीत दिया है निखिल विने ने और गीतकार हैं फैज अनवर।

कार्यक्रम में श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से ये खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है नेहा भसीन ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और गीत के लिए संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं अब एक सूचना सुनिए। इस रविवार दिनांक 28 जून 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा मधुमेह रोग कारण लक्षण और बचाव से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अतुल गुप्ता हार्मोन रोग विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 28 जून 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। फोन करना ना भूलें। रविवार दिनांक 28 जून 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे FM 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। श्रोता सुखविंदर सिंह की आवाज में अब आपको सुनवा रहे हैं टशन फिल्म से ये गीत। संगीत विशाल शेखर का है।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म धूम 2 से ये गीत। संगीत प्रीतम का है और गीत लिखा है समीर ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म तारा रमपम से ये गीत। गायक कलाकार हैं शान सुनिधि चौहान। गीत के लिए संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर हमारा आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ, जिसे गाया है राजकुमार ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुनील राणा को।

0: अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां हाल ही में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। अपर बड़ा बंगाल गांव में स्थित माइक्रो हाइड्रल परियोजना के निरीक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का आज बड़ा बंगाल में ही रुकने का कार्यक्रम है। वे कल बड़ा बंगाल से शिमला लौटेंगे। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में किसी भी मुख्यमंत्री ने इस दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि दौरे का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को करीब से समझना है, जिससे सरकार इस क्षेत्र में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। केंद्र सरकार की वित्तीय वर्ष 2025-26 की गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश ने एक बार फिर साबित किया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद विकास और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि राज्य में निरीक्षण की गई 1029 सड़क परियोजनाओं में से मात्र 3.8% कार्य ही कम गुणवत्ता के पाए गए हैं, जो अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण, कड़ी जवाबदेही और उच्च गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के कारण ये सफलता मिली है। प्रदेश में भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा, जिसके लिए तकनीकी पैरामीटर बनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर ये जानकारी देते हुए प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के पंत ने बताया कि अभियान के तहत उपायुक्तों सहित अधिकारियों का भी एंटी चिट्टा टेस्ट के आधार पर आंकलन करने का निर्णय लिया गया है।
2: दो चीज़ें की जा रही हैं। एक, जो भी भर्ती होगी सरकार में, जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। दूसरा, ये भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी हैं उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा, और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को उस से नंबर दिए जाएंगे।
1: प्रदेश भाजपा ने पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में कांग्रेस सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि जिला परिषद, BDC और नगर परिषदों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव काफी पहले सम्पन्न हो जाने थे, लेकिन कांग्रेस सरकार जानबूझकर इन चुनावों की तिथियां घोषित नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार इस देरी का उपयोग ट्रेडिंग और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रभावित करने के लिए करना चाहती है। भाजपा इस पूरे घटनाक्रम पर आज प्रशासन से तत्काल अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथियां घोषित करने की मांग को लेकर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा।

0: लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्करों ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मांग पत्र सौंपा है और अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। इन कर्मियों ने कहा है कि इन्हें मात्र करीब 6,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है, जिससे इस महंगाई के दौर में कर्मचारियों की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर में करीब 5,000 मल्टीटास्क वर्कर PWD में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद दैनिक वेतनभोगी का दर्जा देने, 8 से 10 घंटे की ड्यूटी के अनुरूप अलग नीति बनाने, वेतन भुगतान की निश्चित तिथि तय करने जैसी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 PM। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व पहाड़ी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं करनैल राणा के गाए इस लोकगीत के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए

0: 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं नरोत्तम कुमार को।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
3: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
4: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: गूंज पहाड़ों की कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शशि शर्मा व साथियों को आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले लोकगीत में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हकीकत फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे लिखा है कैफी आजमी ने। गायक कलाकार है मोहम्मद रफी। गीत के लिए संगीत दिया है मदन मोहन ने।

कार्यक्रम में एक बार फिर से आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म सिकंदर आजम में। गीत के लिए संगीत दिया है हंसराज बहल ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पूरब और पश्चिम से।
1: तारों की भाषा भारत ने
0: महेंद्र कपूर की आवाज में
1: पहले सिखला।
0: गीत के लिए संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: ओ भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था।

ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा देशभक्ति गीत अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की मिली जुली आवाज़ों में। फिल्म का नाम है नया दौर।

देशभक्ति गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से।

अभी आप सुन रहे थे जय हिंद गीतमाला, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं और अब समय है फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। सैनिक भाइयों जय हिंद, हाजिर है फिल्म संगीत के सुहाने सफर के साथ और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस गीत के साथ।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिक भाइयों, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सोनू निगम और अलका याग्निक के युगल स्वरों में लीजिए, अब सुनिए फिल्म बॉर्डर का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

स्वागत सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। जी हाँ सखियों, आज के इस खूबसूरत अंक में मैं हूँ आपके साथ, आप सबकी अपनी रेडियो सखी रीना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सखियों, कैसी हैं आप सब और क्या कुछ चल रहा है आजकल? जी हाँ, सबसे पहले अपनी सखियों का हालचाल ही जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारी सखियाँ अगर स्वस्थ हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, तो वे अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल लेती हैं या संभालती हैं। तो अपने अच्छे से ध्यान रखें, ख्याल रखें और अपने घर में खुश रहें, मस्त रहें। तो सखियों, सबसे पहले कार्यक्रम में हम बात करेंगे मौसम की और जानकारियों की। जी हाँ, बरसात का मौसम आ रहा है ना, और गर्मी से ये हमें राहत दिलाता है, साथ ही साथ अपने साथ बहुत सी समस्याएं यानी परेशानियां भी लेकर आता है। जब खूब बारिश हो रही है या होती है तो ठंडी ठंडी हवाएं और बूंदों की बौछार से मौसम जो है वो बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, सुहावना सा लगता है, जिसमें हमें चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती है, साथ ही साथ हल्की हल्की ठंडक से दिल खुश हो जाता है। तो सखियों, और ऐसे मौसम में हम थोड़ा बाहर भी निकल पाते हैं, क्योंकि जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो बाहर निकलना मुश्किल हो पाता है। इसलिए जब भी बारिश हो या उसके बाद थोड़ा सा मौसम ठीक हो, ठंडा हो जाए हल्का सा, तो बाहर हम बहुत अच्छे से जा सकते हैं और बाहर निकलने का भी मन करता है। साथ ही सखियों, जब बहुत ज़्यादा बारिश है या बरसात हो तो हमें बहुत सी सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं या बरतनी चाहिए। इस मौसम में बहुत ही गंदगी होती है, बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं, जिनसे हमारे स्वास्थ्य को बहुत सी समस्याएँ हो जाती हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी दिक्कतें होती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मौसम बहुत ही सावधानी बरतने वाला होता है। घर के आसपास पानी की वजह से बहुत सा घास पनप जाता है, जिसमें कई जहरीले जानवर या कीड़े मकोड़े छिपे रहते हैं, और इसी मौसम में अक्सर इनके काटने की भी बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो इसका ध्यान रखें, घास इत्यादि ना पनपने दें, कीटनाशक का ज़रूर छिड़काव करें, और पानी भी इस मौसम में गंदा सा आता है, मठमैला सा आता है, जिसका उपयोग करने से हम कई बार बीमार हो जाते हैं। तो साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, जहाँ तक हो सके पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, और खाना भी सादा और हल्का लें। ज़्यादा तला भुना खाना ना खाएं, इस मौसम में खाना हमेशा ताज़ा खाएं और उतना ही बनाएं जितना कि पूरा हो सके, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत नमी होती है और चीज़ें हम कुछ भी बना कर रखती हैं तो बहुत जल्दी ये ख़राब भी हो जाती हैं और फिर हमें फेंकनी पड़ती हैं। इसलिए अच्छा है कि अच्छा और घर का बना ताज़ा खाना खाएं, बाहर का खाना खाने से बचें और मौसम का मज़ा लें गर्मा गर्म चाय के प्याले के साथ। साथ में आप कुछ अच्छा सा हेल्दी भी बनाकर बरसात के मौसम का मज़ा ले सकती हैं, और हम भी रहते हैं अपनी सखियों के साथ हमेशा आप सबके मनोरंजन के लिए। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आप सबके रेडियो सेट पर है, आपके लिए है, साथ में मिलकर सुनते हैं और सखियों मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के

0: बुलंद इरादों से,
1: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अब एक सूचना सुनिए श्रोताओं। इस रविवार दिनांक 28 जून 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा मधुमेह रोग, कारण, लक्षण और बचाव से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अतुल गुप्ता हार्मोन रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 28 जून 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फोन नंबर रहेगा 01892224391। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। फोन करना ना भूलें। रविवार दिनांक 28 जून 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे तक FM 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खूबसूरत से गीत और कुछ विज्ञापनों के बाद फिर से हाजिर हैं हम कार्यक्रम सुनो सखी में। और सखियों, आज मैं हूँ आपके साथ रीना, और अब हम बात करेंगे हमारे आज के खास दिन की। जी हाँ, बहुत ही खास दिन है आज, खास भी और महत्वपूर्ण भी और थोड़ा सा मज़ेदार भी। जी हाँ, आज है राष्ट्रीय धूप का चश्मा दिवस। जी हाँ, ये दिन हर साल 27 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को परावैंगनी किरणों के खतरों के बारे में जागरूक करना है। धूप का चश्मा पहनना सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट से कहीं बढ़कर है। धूप का चश्मा पहनना आपकी आंखों को हानिकारक तत्वों से बचाने का भी एक तरीका है। जैसा कि हमारी आंखें बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हम पूरी दुनिया को, रंगों को और सब कुछ आसानी से देख सकते हैं। इनकी देखभाल करना उतनी ही ज़रूरी है। तेज़ धूप में जाने से पहले हमें किसी अच्छे किस्म के धूप के चश्मे को पहनकर ही निकलना है, ताकि ये हमें धूप की तेज़ किरणों और उससे होने वाले नुकसान से बचा सकें। ये धूल मिट्टी के कणों को भी हमारी आंखों में जाने से रोकता है और हमारी आंखें भी चश्मा लगाने से सुरक्षित रहती हैं। और इस दिन को सखियों मनाने का उद्देश्य भी यही है कि इस दिन के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, लोगों को इसके उपयोग की अहमियत पता लगे और हम सभी इसका इस्तेमाल करें, ताकि हमारी नज़र भी सुरक्षित रहे और इनसे हम खूबसूरत दुनिया भी देख सकें। तो ये थी बात सखियों आज के खास दिन यानी राष्ट्रीय धूप का चश्मा दिवस पर। और इसके साथ ही आज के दिन को हम एक और दिवस के रूप में मनाते हैं, और वो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम यानी उद्योग दिवस के बारे में। ये दिवस भी हर साल आज के दिन ही मनाया जाता है, 27 जून को, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2017 में एक प्रस्ताव पारित करके 27 जून को इस दिवस के रूप में नामित किया था। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इन उद्यमों के महत्व पर प्रकाश डालना और वैश्विक स्तर पर रोजगार, नवाचार और आर्थिक लचीलेपन में MSME की भूमिका निभाना है। भारत में व्यवसायों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं और इसमें लगभग 5 करोड़ तक का टर्नओवर है। बात करें लघु उद्योग की, तो इसमें 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का टर्नओवर। और मध्यम उद्योग की अगर हम बात करें सकिए, तो 50 करोड़ तक का इसमें निवेश होता है और 250 करोड़ तक का टर्नओवर है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने और संयुक्त प्रयासों पर बातचीत को प्रेरित करने हेतु किया था। तो ये थी सखी जानकारी इस दिवस पर, और अब हम बात करेंगे हमारे बच्चों की।

सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते थे, ना सिर्फ खेल कूद, बाकी और भी कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती थी जो हम घर के बाहर रहकर करते थे। मेलजोल कितना ज़्यादा होता था सखी उन दिनों में, और एक दूसरे के साथ शेयरिंग की भावना होती थी, एक दूसरे की मदद के लिए हम तैयार रहते थे। कितनी हेल्दी चीज़ें हम खाते थे, घर का बना खाना, जिसमें आजकल की तरह फास्ट फूड को के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती थी। घर पर जो भी हेल्दी चीज़ें बनती थी, हम सभी बड़े शौक से, बड़े चाव से खा लेते थे। और बात करें आजकल के बच्चों की, तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हो गए हैं, हर बात में इतने नखरे इनके रहते हैं कि हर चीज़ में इनकी आनाकानी शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करूँगा या करूँगी, है ना। और सबसे बड़ी बात सखियों की, अकेले रहना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है, एक दूसरे के साथ मेल जोल ज़्यादा नहीं ये रखना चाहते, और शेयरिंग इनके स्वभाव में, यानी आजकल के बच्चों में, ना के बराबर है। और आजकल के बच्चे जो हैं, अपना ज़्यादातर समय फ़ोन, कंप्यूटर या इनका जो भी अपना पसंदीदा गैजेट्स होता है उस पर ही बिताते हैं। वे ना तो किसी के साथ ज़्यादा घुलते मिलते हैं या घुलना मिलना चाहते हैं, या फिर ज़्यादा बातचीत करते हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए हेलो हाय नमस्ते हो गई और फिर अपने कमरे में या अपनी फेवरेट जगह पर चले जाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। और अगर हम इन्हें कहीं चलने के लिए भी कहती हैं तो ये साफ मना कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं, बहुत से बहाने लगाते हैं। और जी हाँ सखी, इसी विषय पर हम अपनी बातें आगे आपसे जारी रखेंगे, पर उससे पहले फिर से वक्त एक खूबसूरत से गीत का, तो चलिए गीत सुनते हैं और बाकी की बातें करेंगे गीत के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जैसे कि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम हाजिर हैं और गीत से पहले हम बात कर रहे थे अपने बच्चों पर कि किस तरह के आजकल के बच्चे अपना ज़्यादातर समय फ़ोन, टीवी या कंप्यूटर पर बिता रहे हैं। आवश्यकता अनुसार चीज़ें इस्तेमाल करना अच्छी बात है सखियो, पर कहते हैं ना अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा देर तक मोबाइल ना दें या फिर उन्हें आप चेक ज़रूर करती रहें कि वे क्या देख रहे हैं। बड़े बच्चों की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल के शौकीन हैं। जब तक उन्हें फ़ोन हम दिखाते रहते हैं, वे खाना खाते हैं या चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही फ़ोन हटाया उनका रोना शुरू हो जाता है या नखरे शुरू हो जाते हैं, रोने लगते हैं। ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल से क्यों बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर तो असर डालता ही है, साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी वे कमज़ोर हो रहे हैं। उनमें सहन करने की क्षमता बहुत कम हो गई है, आंखें उनकी ख़राब हो रही हैं, मोटे मोटे चश्मे उन्हें लग रहे हैं और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे खराब शारीरिक मुद्रा, ध्यान केंद्रित करने में कमी, चिड़चिड़ापन और गंभीर स्क्रीन एडिक्शन जैसी समस्याएँ होती हैं। इसके अलावा छोटी उम्र में लगातार मोबाइल देखने से ऑटिज्म जैसे लक्षण और सीखने में अक्षमता का खतरा बढ़ जाता है।

मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करने से बच्चे शारीरिक गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं और उनमें मोटापा और शारीरिक कमजोरी का खतरा भी बढ़ रहा है। तो उन्हें रोके सकिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, गेम्स इत्यादि में उनके साथ जब वे बाहर खेल रहे हों तो उनके साथ भाग लें और उन्हें ज़्यादा मोबाइल देखने के प्रभावों के बारे में भी बताएं। तो ये थी आज की हमारी सुनो सखी की बातचीत, और चलते चलते एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

इसी खूबसूरत गीत के साथ सखियों हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में। अब मुझे यानी रीना को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से। पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

0: का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said, Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and

याराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें संगीत राजेश रोशन का। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे तो स्कूल कॉलेज के लगभग सभी दोस्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे दोस्तों का साथ बड़ा ही प्यारा रहता है। कल हमने भी अपने दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती की, खूब सारे गीत गाए, बड़ा प्यारा साथ रहा हम सबका। हम बस एक दोस्त की बड़ी याद आई जो किसी कारण से हमारे साथ न चल सकी, उसे भी हमने वीडियो कॉल के साथ साथ रखा, तो दोस्ती इससे भी होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इन दिनों दोस्ती निभाना बड़ा आसान है, और अगर आपके पुराने बिछड़े दोस्त आपको किसी तरह से मिल जाए सोशल मीडिया के जरिए या किसी दूसरे दोस्त के जरिए उनका नंबर मिल जाए, तो बड़ा आसान है उन्हें देखना वीडियो कॉल के जरिए या उनसे बात करना मोबाइल के जरिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब बड़ी दूर दूर हो जाया करती थी दोस्त और सहेलियाँ, क्योंकि आमतौर पर सखियाँ तो अलग अलग जगह विवाह करके चली जाती थीं और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता था। तो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर अचानक मुलाकात हो जाती थी, या कहीं कह सकते हैं कि अगर सबका मायका एक ही जगह हुआ तो वहाँ पहुँचते थे एक ही समय में, तो कहीं मिल गए। तो इस तरह से कभी आप मिले हैं अपने किसी दोस्त से अचानक, और कैसा लगा, कैसा रहा, वो किस्सा क्या है हमें बता सकते हैं आप आज के इस कार्यक्रम में। और सुरीला सफ़र कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ये गाना उन्होंने लिख भेजा है। कह रहे हैं एक बार चेन्नई से जबलपुर के सफ़र में एक मैडम साथ में थी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है, सो हमने मिल बांट कर खाना

खाया। रात में जब ट्रेन सुनसान राहों में तेज रफ्तार से अपना सफर तय करी थी, अचानक मैम की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। मेरे पास जो अंग्रेजी मेडिसिन या घरेलू दवाइयाँ थी उन्हें मैंने उन्हें दिया, जिससे उन्हें थोड़ा आराम आया। मेरा स्टेशन आने वाला था, पर मुझे लग रहा था कि मैं ना उतरूं ताकि उनकी देखभाल कर सकूं, पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो अब ठीक हैं। फिर भी लगातार फ़ोन पर कॉन्टैक्ट बना रहा और वो मुझसे आज भी बात करती हैं और कहती हैं, मेरी जीवनदायिनी हो तुम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। लेकिन हम तो सभी शुक्रगुजार हैं उस परवरदिगार की, कह रही हैं कि जो सारी दुनिया को संभाले बैठा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने की और इस खूबसूरत किस्से के ज़रिए ही आपकी ये मुलाकात यादगार भी बन गई और जो बातें थोड़ी मोड़ी हो रही थी वो एक अच्छे रिश्ते में बदल गए, हम कह सकते हैं दोस्ती के रिश्ते में, जो आप भी आज तक उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जीवन की यात्रा कुछ इसी तरह से चलती है, जहां हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे हमारा वाकई कोई खून का रिश्ता ना भी हो, लेकिन बातों के ज़रिए या एक दूसरे के व्यवहार के ज़रिए ये रिश्ता बन जाता है। और जीवन के इस चक्र के बारे में क्या ही कहा जाए। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है कि इस गीत को किसने गाया है।

आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज़, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बातें कुछ बीते ज़माने की, या कहें जो बिछड़ जाते हैं ऐसे दोस्तों की, जो मिल जाते हैं वापस ऐसे दोस्तों की, और जीवन के इस चक्र की जो लगातार चलता रहता है और इसके पीछे कुछ छूटता है आगे कुछ मिलता है। हमारे साथी कहने के जीवन का चक्र का सही और सुहाना अर्थ आज के सुरीला सफ़र गीतों के माध्यम से दोहरा रहा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं गीतों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात लिखी कि आज की इबारत पढ़कर लग रहा है कि सुरीला सफ़र की ट्रेन के पहिए जीवन चक्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले कभी बारात कभी बिना सामान चले, जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रिश्ते, जहाँ एक पल थम के रोना होगा एक पल चल के हंसना, क्योंकि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, इसलिए कह गए ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी कहानी ये बात किसी ने नहीं जानी, जब हम सफर साथ छोड़ अपना छोड़ चले, रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले, जीवन में साथ चलते चलते अंत में तो अकेले ही जाना है। इस बात से जुड़ा एक गुजराती गीत भी है, एकला ज आव्या मनवा एकला जवाना, साथी बिना संगी बिना एकला जवाना, ये इन्होंने लिख भेजा है बहुत सारे गीतों को साथ जोड़कर। हमारे एक साथी कहने कि सिने सृष्टि को दाद दी जाए, जिंदगी का एक भी पहलू नहीं छूटा, चाहे गीत हो संगीत हो राग हो या चित्रपट की कहानी हो, हमारे धुरंधर गीतकार जो 50 से 80 90 के दशकों में हो गए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, जिंदगी को शब्दों में निचोड़ कर रख दिया, एक एक गजल में एक एक पंक्ति में एक एक गीत में, आज आशा है बहुत सारे गाने हमेशा की तरह सुनने का मजा आएगा। और इन्होंने गीत भी अपनी पसंद का लिख भेजा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय के साथ जिंदगी में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, दोस्त यार समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, बस एक ही रिश्ता जीवन भर साथ चलता है, वो है जीवन साथी का। एक और साथी कहते हैं कि जो भी कविता हमने जो भी इबारत लिखी है इसके अंश का भावार्थ बहुत ही सरल, मार्मिक और जीवन के गहरे सत्य को दर्शाता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन की निरंतरता और उसमें आने वाले बदलावों को खूबसूरती से पिरोया है। कवि ने बताने की कोशिश की है कि सच्चा साथी केवल समय है। जीवन के सफर में हमारे बहुत से मित्र यार दोस्त और संगी साथी बनते हैं, समय के साथ इनमें से कई पीछे छूट जाते हैं, कुछ ही हमारे साथ बाकी रह जाते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, ऐसा इन्होंने गीत के माध्यम से अपनी बात लिख भेजी है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज हमें अपने बचपन में जाना है, बचपन की वो बातें, दादी नानी की कहानी और किस्से होने वाले हैं आज के प्रोग्राम में, बहुत मज़ा आने वाला है, आज किस्से कहानी और पहेलियों से भरे प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे शहर को भी लेकर एक कहानी कि आज जबली नाम के ऋषि रहते थे, उनके नाम पर शहर का नाम पड़ा जबलपुर। तो ये बातें तो आप भेजी ने, साथ ही बताइए अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जुड़ी ऐसी बातें जिन्होंने आप से जिनसे आप जुड़े रहना चाहते हैं, जिन्हें आप खोजते हैं या जिनसे मिलकर आपको बड़ा आनंद आता है, उनके बारे में कुछ बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, जो भी जीवन के इस दर्शन को बिल्कुल सार्थक बताता है। और इस गीत में कौन है नायक ये बताइए, फिल्म का नाम भी बताइए।

परिचय फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत में नजर आते हैं जितेंद्र। यही हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी अनायास ही कहीं कभी कुछ लोग मिल जाते हैं जो स्मृतियों में रह जाते हैं सदा के लिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं जीवन में किसी भी समय कोई भी मुसीबत आती है तो रिश्तेदार और परिवार वाले तो बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी और दोस्त ही साथ देने पहुँचते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथी हैं जिन्हें परेशानी आ रही थी सुरीला सफ़र की पोस्ट पर जाने के लिए, वो कह रहे हैं कि जल्दी ही पोस्ट आती है, उस वक्त तो नज़र आती है लेकिन जब 1 बजे कार्यक्रम आता है तो किस तरह से उस पोस्ट पर पहुंचे। तो ये बहुत ही आसान है, जिस तरह से आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर उस वक्त सुरीला सफ़र की पोस्ट देख पाते हैं, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज अगर आप खोलते हैं तो वहाँ आपको कुछ थोड़ा स्क्रॉल करने पर 2-3 पोस्ट के नीचे ही सुरीला सफ़र की पोस्ट नज़र आ जाएगी और आप वहां कमेंट के ज़रिए हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि एक दोस्त जो कि हमारे साथ 1980 में पढ़ा था, एक दिन में अपनी श्रीमती जी को ट्रेन पर छोड़ने गया तो वहाँ पर वो दोस्त मिला। वो तो नहीं पहचाना पर मैं पहचान गया, जब उसको याद दिलाया तो वो भी पहचान गया, वो उसी ट्रेन में टीसी था। ये मुलाकात साल 2000 में हुई थी। वाकई बहुत ही मज़ा आया होगा आपको मिलकर। और ये भी अक्सर होता है कि लोग इतनी बदल जाते हैं चेहरा वगैरह कि हम पहचान नहीं पाते, तो जो पहचान सकता है वो दोस्त ज़रूर सबको खोज लेता है। और वाकई हर टीम में, या कहते हैं कि हर दोस्ती वाले जो एक ग्रुप होता है उसमें एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पुराने पुराने साथियों को खोज खोज कर लाता है और सबसे मिलवा देता है। तो क्या आप भी ऐसे ही दोस्त हैं, हमें बताइएगा। हमारे एक और साथी का कहना है कि बहनें मिल जाती हैं लेकिन सहेलियाँ नहीं मिल पाती। वाकई ये बात भी सही है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन में सभी रिश्ते बने बने मिल जाते हैं लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता है जो दिल से जुड़ता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे स्कूल के ज़माने की दोस्त की हमेशा मेरे साथ है और रहेगी। इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, वो हमेशा मेरे पास बैठी रहती है और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है यार मेरा साथ मत छोड़ देना क्योंकि मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। ऐसे होता है दोस्ती का रिश्ता, निस्वार्थ, बहुत सुंदर, बहुत प्यार। मेरी जैसी दोस्त सबको मिले, पता नहीं मैं जी पाऊंगी कि नहीं लेकिन उससे बिछड़ने का दुख मुझे सता रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आप इस तरह की बातें बिल्कुल ना सोचें क्योंकि आपकी दोस्त आपके साथ है और जब दोस्त साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। तो अपने मन में सकारात्मकता रखिए कि वाकई आपको जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर होगी और इलाज तो आप करवा ही रही होंगी, उस पर पूरा ध्यान रखिए। जो भी बातें कही जाती हैं चिकित्सक की ओर से आपको उसका ध्यान रखिए और समय पर दवाइयाँ लीजिए, आप बिल्कुल चंगी हो जाएंगे हम कहते हैं। और आपकी दोस्त के का जो भी आपके साथ में प्रेम है वो प्रेम बना रहेगा, आप दोनों का साथ भी बना रहेगा, यही हमारी कामना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियां होते ही नानी के घर जाने की जो उत्सुकता होती थी उसकी तुलना आज की किसी भी लग्जरी ट्रिप से नहीं की जा सकती। रात को छत पर चारपाई बिछाकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच नानी या दादी को घेर कर बैठ जाना और फिर शुरू होता था कहानियों का एक ऐसा अटूट सिलसिला जो हमें नींद की आगोश तक ले जाता था। वाकई और कई बार तो नींद उड़ जाती थी कहानी सुनने की चाह में कि कहीं कहानी का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो छूट ना जाए। और जो अपने मामा मामी मामा के बच्चे होते हैं, मौसियों के बच्चे होते हैं, उनसे भी तो एक बड़ी दोस्ती होती है जो गर्मी की छुट्टियों में ही निभाई जाती है।

तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो कही हैं, हमें ये भी बताइएगा कि किसी तरह से आप अपने बिछड़े दोस्त या सहेली से मिले, और मिले तो वो किस्सा क्या है, और ये भी बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें संगीत किसका है।

दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सुरीला सफ़र। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की भारत जीवन संघर्ष की भावनात्मक कहानी का चित्रण कर रही है। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जीवन तो चलता रहता है। आदमी जिंदगी के सुख दुख और

धूप छांव जैसी कहानियों का किरदार बना रहता है। हमारी कौर साथी कहती हैं कि जीवन का पहिया समय के अनुसार आगे बढ़ता जाता है, दोस्त साथी नाता रिश्ता पीछे छूटता जाता है और मुसाफिर अपने रास्ते झूमते तरसते बढ़ता जाता है, यही जीवन की रीत है। हमारी कौर साथी कह रहे हैं कि जीवन के इंद्रधनुषी सतरंगों से सजी कवितामयी लघु भारत स्वागत योग्य है। बाल्यकाल की निस्वार्थ पवित्र मित्रता से जुड़े संगी साथी युवा काल तक आते आते सम अभिरुचि और समानांतरता तक सीमित रह जाते हैं। तत्पश्चात गृहस्थ काल में उत्तरदायित्व के दलदल में आकंठ फंसे दिनचर्या में वो संख्या यादों में ही सिमट रह जाती है। शुक्र है तकनीकी तब्दीली से प्राप्त सोशल मीडिया का, जिसने उत्तरार्ध में पुनः उन्हें एकत्रित कर जीवन में उमंग भर कर उन मैत्रीपूर्ण स्वर्ण युगों को पुनर्जीवित कर दिया है। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि कितना अकेलापन है इस भीड़ भरी दुनिया में, इस भीड़ भरी दुनिया में आखिर हम दिल को कहां ले जाएं? लोग आते हैं, मिलते हैं, कारमा बनता है, फिर भी हर किसी को अकेले आए थे अकेले जाना पड़ता है। जीवन की नैया चलती रहेगी, उम्र बीतती जाती है। फिर दादी बताती है कि सब कर्म का, कह रहे हैं कि सर्व कर्म का भोग है, यही जीवन है, इस जीवन का यही रंग रूप है, चलते रहना हमारा काम है। ऊपर वाले मांझी के हाथ में हमारी डोर है और हम तो बस कठपुतली हैं, वही हमारा खेवैया है, वही तारणहार है, उसकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। वाकई बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरा दोस्त तो पढ़ाई के दौरान ही इस जीवन को छोड़कर चले गए। दुख तो इस बात का है कि एक ही मोहल्ले में थे और एक स्कूल में साथ रहा करते थे। हमारे एक और साथी कहते हैं कि कहने को तो सब रिश्ते नाते हैं, सबके सब हैं, यहीं रह जाते। आज भले ही लगा है मेला, अंत समय तो चला अकेला। माया का बाजार लगा है, जिसको देखो वही सगा है। लेकिन आंखें कब भराई जब देखी उनकी सच्चाई। सब स्वार्थ के मीत हैं सारे, अंत समय बस राम है प्यारे। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम 1978 के कॉलेज बैच में अभी तक वार्षिक भेंट करते हैं। समूह का नाम भी रखा है पुनर्मिलन 78। दिन भर मौज मस्ती करते हैं, लगता है जैसे फर्स्ट ईयर कॉलेज कॉमन रूम में है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि एक बात बताना चाहती हैं, अभी भी कभी भी हम किसी अपने प्यारे से दोस्त को याद करते हैं तो, या उसकी कोई बात सामने आ जाती है तो, या उसका कॉल आ जाता है, या तो वो कहते हैं कि मैंने आपको भी याद किया। कभी कभी किसी दोस्त का प्यारा सा एहसास ये याद दिलाता है कि कोई है जो हमें दिल से याद कर रहा है। हमारे कौर साथी कहते हैं कि जहाँ याराना वो खूबसूरत रिश्ता है जहाँ शब्दों से ज़्यादा एहसास बोलते हैं। सच्चे यार हर खुशी में मुस्कुराते हैं और मुश्किल में साथ निभाते हैं। जिंदगी की राह में याराना ही सबसे अनमोल खजाना है। वाकई और जीवन में इस तरह की जो बातें हैं वो लगी रहती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाई कितनी मुश्किलें हैं, और कई बार लगता है कि बस जीवन तो इसी तरह से चलता रहता है, ये मुश्किलें भी पार हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किसकी आवाज़ में है।

0: धूप तो कभी छाओ।
1: कभी धूप कभी छाओ, कवि प्रदीप की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त का संगीत, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। संगीत किसकी आवाज में गीत है हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक जीवन में कई दोस्त मिले, कुछ नए दोस्त बने, कुछ समय के साथ दूर हो गए, कुछ यादों में बस गए, लेकिन मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसके बिना मैं अपने बचपन की कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी दोस्ती सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं थी, बल्कि हम दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। हमने साथ खेला, साथ हंसे, छोटे छोटे सपने देखे और जीवन के कई खूबसूरत पल साझा किए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा हैं। कभी कभी उसकी बातें, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए हुए दिन अचानक याद आ जाते हैं और मन भावुक होता है। भाई ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपको बचपन से ये साथ मिला, कितनी अच्छी बात है ये। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से पाठशाला रीयूनियन चलन में है। विदेश से आया एक सहपाठी अहमदाबाद शादी में सम्मिलित होने आया और उसने एक रीयूनियन का आयोजन किया। जिन दोस्तों से स्कूल में होते हुए भी नहीं मिल पाए थे, उनसे भी मिलना हो जाता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कविता साझा की है। जीवन के सुप्रभात खिल रहे कमल धर पग पायल मन पटल पर नयन जीवंत हो तुम, अंतर मन में निरंतर अनहद धवन चल रहा है, हर मन प्यार पानी कंठ भर रहा हूँ, स्वर तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी। हम कहना चाहेंगे कि अगर आप कविता भेजते हैं तो एक जहाँ उसमें जो पंक्तियाँ होती हैं उस तरह से अगर लिखें तो ये बहुत ही आसान होगा, आपकी कविता भी बहुत अच्छी तरह से सामने आ पाएगी। हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स और कॉलेज के फ्रेंड मुझे फेसबुक पर मिले और हमारा लकड़ी वाला था वहाँ के फ्रेंड भी फेसबुक पर मिलके, सहेलियाँ और दोस्त भी, सुरीला सफ़र के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार उन्होंने कहा, तो इनके सारे जो दोस्त यार हैं वो उन्हें सोशल मीडिया पर मिल गए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम से उन्हें अपने एक दोस्त की याद आ गई जो 2002 में अचानक से पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया था और रातों रात, और 2 महीने पहले उसी का फ़ोन आया मेरे पास। वाकई बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको अचानक फ़ोन आना, दोस्त को अचानक नंबर मिलना और आपके पास अचानक फ़ोन आना। वही हमारे एक साथी कह रही कि मैं छोटा था तब एक गांव में रहता था, वहां मेरे दोस्त अब शहर में आने के बाद छूट गए। आज 40 साल की उम्र के बाद कोई मिलता है तो मुझे याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा होगा जो आपको याद करेगा और आप भी उसे याद रखते होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत जीवन के अनवरत सफ़र की कहानी कहती है, जहां दोस्त रिश्ते और अपने समय के साथ पीछे छूटते जाते हैं, लेकिन जीवन का पहिया लगातार चलता रहता है। कभी खुशियों की धूप मिलती है तो कभी दुख की छाया। मुसाफिर की तरह हर व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है और दादी नानी की कहानियों की तरह जीवन हमें हर मोड़ पर नई सीख देता है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है और यही आज की भारत का मूल संदेश भी है। वहीं हमारे एक साथी कह रही कि मेरी सहेली से 35 साल बाद मिली और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और आज भी हम दोनों बहुत बातें करते हैं। वाकई सहेलियों का वापस मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि अलग अलग जगह विवाह के बाद चली जाती हैं सहेलियाँ आमतौर पर, और उसके बाद उनका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी अगर थोड़े पुराने ज़माने की हों जब सोशल मीडिया का इतना चलन नहीं था या फ़ोन उस वक्त इतने ज़्यादा नहीं थे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह का एक गीत आपको सुनवाते हैं जब सभी सहेलियां वाकई भावुक हो जाती हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गाने सुरीला सफर में और आपकी बातें शामिल हो रही हैं इस कार्यक्रम में कमेंट्स के जरिए जो बातें आप हम तक भेज रहे हैं। हमारे साथी कहते हैं कि एक ऐसा मौका था जब जहाँ पुराने क्लास के साथियों से मिलने का मौका मिला, स्कूल कोएड है, मीट में कई स्कूल के गुरुजनों से आशीर्वाद भी लेने का मौका मिला, एक अलग ही तरह का माहौल था। उस दिन सब खुश थे और खुशी के आंसू भी थे। एलुमनी मीट जो होती है आमतौर पर कॉलेज और स्कूल्स में बुलाया जाता है, पुराने सहपाठियों से मिलने का वहाँ मौका मिलता है। वहीं हमारे साथी कह रहे कि हमारे अगल बगल में रहने वाले 10-12 दोस्त रात को खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा रोज़ बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, हंसी मजाक करके अपना माइंड फ्रेश करते हैं। भाई हम तो कहेंगे कि आप सबसे अमीर हैं इन दिनों, क्योंकि इतने सारे दोस्त आपके पास हैं। और जो कमेंट हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें हमारे एक साथी ने जो लिखा था शुरुआती बात कि 2022 में वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल अजमेर में गए थे एलुमनी मीट में और वहाँ उन्हें सबसे मिलने का मौका मिला था। हमारे को साथी कह रहे हैं कि 2 साल पहले सपरिवार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए ट्रेन से गए थे। दर्शन के बाद हमारी वहाँ पर उदयपुर के परिवार के साथ परिचय हुआ। फिर हम वहाँ से टैक्सी किराए पर लेकर जिणमाता सालासर धाम और अन्य जगह दर्शन किए और उस परिवार से आज तक मोबाइल से

रिश्ता बना हुआ है, तो कई बार इस तरह से भी दोस्त मिल जाते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाँ, हम बहुत दिनों के बाद दोस्तों से मिले, हमारा विश्वास बरकरार है, अभी भी वो मेरा बड़ा ख्याल रखती है, सालों बाद देखने के बावजूद वही प्यार विश्वास का अनुभव हुआ है, भगवान उसे जल्दी ठीक करे, अब पता नहीं क्यों डिप्रेशन में गई है। भाई अगर डिप्रेशन में गई भी हैं तो उसका कारण तो आप पता कर ही लेंगी, साथ ही उनका साथ बने रहिए और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी उनकी मदद कीजिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1975 में पिताजी का ट्रांसफर सांची में हुआ था, वहाँ पर हमने 8वीं क्लास की पढ़ाई की, बाकी साथी तो बिछड़ गए, लेकिन एक दोस्त किसे 50 साल बाद साल 2025 में मुलाकात हुई और हमने पुरानी बातें की, तो कितनी अच्छी रही होगी ये मुलाकात, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि इस मुलाकात में तो आपने बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बहुत सारी पुरानी बातें, यादें ताज़ा की होंगी। तो चलिए एक याद ताज़ा कीजिए इस गीत के साथ और हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

किया का घर फिल्म का ये गीत आपने सुना, और हमारे साथी कह रहे हैं कि बिछड़ने के बारे में है, जीवन में मिलना बिछड़ना चलता रहता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दिसंबर 25 में एलुमनी मीट जब हुई तो 40 से 45 लोगों से, इतने 40-45 साल बाद सबसे दोस्तों से वो मिले। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गांव के काम से गाँव में से ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहे थे, तो ठंडी हवा का मौसम था, गाड़ी में पंखा जोर से चल रहा था, तो उठकर पंखा बंद करने के लिए जैसे ही स्विच पर उंगली रखी तो एक जो साथी यात्री था उसने मना किया, और जब उलझ पड़े और सबके सब लड़ाई झगड़ा जो होने लगा, उनकी बहस होने लगी, तो मैंने सोचा कि अब मेरी खैर नहीं। शोर सुनकर बगल वाले कोच से एक लंबा चौड़ा शख्स वहां आया और मुझे देखकर चौंक पड़ा और बोला, अरे तू? और मैंने उसे पहचाना, लेकिन उसने सभी को शांत किया। पुलिस

इंस्पेक्टर था वो, उसने पहचान पत्र दिखाया, वो मेरे बचपन का दोस्त था, 30 साल के बाद उसकी इस तरह से हमारी मुलाकात हुई। तो कितनी अच्छी मुलाकात रही होगी ये, और जीवन का भी ये सफर तो यूं ही चलता रहेगा। कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत, बताइए किसकी आवाज़ में।

सचिन देव बर्मन की आवाज़ में गाइड फिल्म से गीत आपने सुना, यही कार्यक्रम का अंतिम गीत था। हमारी यही कामना है कि आपके सभी साथी बिछड़े हुए जो भी हैं वो आपको मिल जाएं और आप प्रसन्नता से रहें। और आपकी एक साथी विविध भारती तो हमेशा आपके साथ है। सुरीला सफ़र जारी रहेगा विविध भारती का, लेकिन ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी चेहरे पर। श्रोताओं, जब भी सुंदरता की बात होती है तब सबसे पहले चांद का नाम याद आता है। सदियों से चांद को कोमलता, शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी सुंदरता केवल रूप रंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके व्यक्तित्व, विचारों और भावनाओं की चमक उन्हें और भी खूबसूरत बना देती है। चांद रात के अंधकार में प्रकाश फैलाता है।

उसकी चांदनी धरती को एक अनोखी शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोगों का चेहरा भी अपने आसपास के वातावरण को आनंद, स्नेह और सकारात्मकता से भर देता है। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने सुंदरता, अपने मधुर व्यवहार और सरल स्वभाव से लोगों का दिल जीत लेते हैं।

अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती है तब उसका चेहरा किसी पूर्णिमा के चांद से कम नहीं लगता। उसमें त्याग, ममता और निस्वार्थ प्रेम की ऐसी आभा होती है जो किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से प्राप्त नहीं की जा सकती। उसी प्रकार पिता के चेहरे पर परिवार के लिए किए गए संघर्षों की रेखा भले ही दिखाई दे, लेकिन उसमें समर्पण और जिम्मेदारी का जो तेज होता है वह उन्हें अत्यंत सुंदर बना देता है। बच्चों के चेहरे भी चांद से कम सुंदर नहीं होते हैं।

उनकी निष्कपट हंसी, भोलेपन से भरी आंखें और मन में किसी प्रकार का छल कपट ना होना उनके चेहरे को विशेष आकर्षण प्रदान करता है। बच्चे की मुस्कान में वो जादू होता है जो किसी भी उदास व्यक्ति के चेहरे पर खुशी ला सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मासूमियत सबसे बड़ी सुंदरता है। साहित्य में भी सुंदर चेहरे का वर्णन केवल बाहरी रूप के आधार पर नहीं किया गया। महाकवि और साहित्यकार बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सुंदरता का वास्तविक निवास मन में होता है। यदि मन सुंदर है तो उसका प्रभाव चेहरे पर दिखाई ही देता है।

लोग अक्सर बाहरी सुंदरता को अधिक महत्व देते हैं। महंगे सौंदर्य प्रसाधन, फैशन और दिखावे की दुनिया में असली सुंदरता का अर्थ कहीं पीछे छूटता जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सुंदर चेहरा वही है जो दूसरों के जीवन में खुशी और आशा का प्रकाश फैलाए। जिस चेहरे को देखकर किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना मिले, किसी निराश व्यक्ति को प्रेरणा मिले और किसी अकेले व्यक्ति को अपनापन महसूस हो, वही चेहरा लोगों की नज़र में सुंदर होता है। लेकिन एक सुंदर व्यक्तित्व वाला चेहरा हृदय को स्पर्श कर जाता है। चांद की चांदनी कुछ घंटों के लिए संसार को रोशन करती है, जबकि प्रेम, करुणा, विनम्रता और सदाचार से आलोकित चेहरा जीवन भर लोगों के मन में उजाला फैलाता है। इसलिए सच्ची सुंदरता चेहरे की बनावट में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और चरित्र की उज्ज्वलता में निहित है। ऐसा चेहरा न केवल खूबसूरत होता है, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है। दिल को

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में

0: मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुँचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न

0: हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
0: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्क फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

यादों की बारात फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहुल देव बर्मन की तर्ज आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने, फिल्म का नाम छोटे नवाब। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: प्यार हुई।
1: किशोर कुमार की आवाज में बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे। सुनिए किशोर कुमार की आवाज में शौकीन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में उन्होंने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके पारिश्रमिक का अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा और यात्रियों को भी सुरक्षित व किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में इस मौके पर एक कार्यक्रम में बताया कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपराष्ट्रपति

0: कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है और देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उन्होंने उद्यमियों से आधुनिक तकनीक अपनाने और गुणवत्ता बनाए रखते हुए लागत कम करने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान चुनाव जीते हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकायों में भी भाजपा का दबदबा है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर जिला परिषद, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव टाल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनादेश का अपमान करने वाले अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है और भाजपा इस बारे में सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेगी।
1: नगर परिषद में 26 में से 18 में अभी तक चुनाव कराए गए हैं। ब्लॉक समिति में हिमाचल प्रदेश में 92 में से 47 जगह चुनाव करवाए गए हैं और उसमें 31 जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई और 16 जगह कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन अभी तक भी जहां बहुमत भारतीय जनता पार्टी का वहां पर भी ब्लॉक समिति के चुनाव को अभी तक डेट नहीं दी गई है। बार बार आग्रह करने के बावजूद डेट नहीं दी। जिला परिषद हिमाचल प्रदेश में 12 है, 12 में से 3 जगह चुनाव अभी तक संपन्न हुआ है और बाकी जगह अभी तक चुनाव की तारीख नहीं दी जा रही।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मॉनसून पूर्व की भारी वर्षा से लारजी जल विद्युत परियोजना के जलाशय में जलस्तर व गाद की मात्रा बढ़ गई है। राज्य बिजली बोर्ड ने बताया है कि लारजी पावर स्टेशन के लारजी स्थित बांध से कल सुबह 6 बजे से 29 जून सुबह 6 बजे तक गाद की निकासी की जाएगी। ऐसे में लारजी बैराज के सभी गेट खोले जाएंगे और जलाशय से लगभग 2000 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जाएगा। बोर्ड ने क्षेत्र के लोगों से एहतियात बरतने और ब्यास नदी के समीप न जाने की अपील की है। सोलन में चल रहे राष्ट्रीय शूलिनी मेले के दूसरे दिन आज पौराणिक ठोडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए स्थानीय लोगों सहित बड़ी संख्या में पर्यटक भी ठोडा मैदान में मौजूद रहे। इस दौरान ढोल नगारों की गूंज, रणभेरी की धुन और खिलाड़ियों के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शाम शिमला जिले के रामपुर इलाके में तकलेच काशापाट सड़क पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में उरेई समरा सड़क पर आज एक कार के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद लीजिए पेश है सामयिक चर्चा। विषय है राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026, हिमाचल प्रदेश पूरी तरह तैयार। वाचक स्वर पूनम शर्मा का है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में वर्ष 2026 का राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल रविवार 28 जून से देशभर में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को पोलियो मुक्त बनाए रखना और बच्चों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखना है। बूथ दिवस के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर उन बच्चों को भी पोलियो की दवा पिलाएंगी जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाए। ये खुराक पूरी तरह सुरक्षित, प्रभावी और निशुल्क है। जिन बच्चों को पहले भी पोलियो की खुराक मिल चुकी है उन्हें भी इस अभियान के दौरान दोबारा पोलियो की दवा पिलाना पूरी तरह सुरक्षित और आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में भी राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अभियान के दौरान प्रदेश के 5,94,000 से अधिक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई जाएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में 4,753 पल्स पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं।

0: पोलियो वैक्सीन सहित सभी आवश्यक सामग्री समय रहते सभी जिलों एवं बूथों तक पहुंचा दी गई है और प्रशिक्षित टीकाकरण दलों और पर्यवेक्षकों की तैनाती भी कर दी गई है। अभियान की तैयारियों की समीक्षा 23 जून 2026 को स्वास्थ्य सचिव हिमाचल प्रदेश एम सुधा देवी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य टीकाकरण कार्यबल की बैठक में की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया और अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी प्रकार सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित कर संबंधित विभागों एवं हितधारकों के साथ तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के मिशन निदेशक प्रदीप कुमार ठाकुर ने प्रदेश के सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि वे 28 जून को अपने 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसे पहले पोलियो की खुराक मिल चुकी हो, अपने निकटतम पल्स पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर आएं और पोलियो की 2 बूंद पिलवाएं। उन्होंने कहा कि बार बार पोलियो की दवा पिलाने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत होती है तथा पोलियो वायरस के संक्रमण का खतरा समाप्त करने में सहायता मिलती है। बूथ दिवस के बाद 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर उन बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगी जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुँच पाए। इस विशेष अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। मिशन निदेशक ने नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, शहरी निकायों के जन प्रतिनिधियों, शिक्षकों, सामुदायिक नेताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपील की है कि वे अधिक से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो बूथ तक लाने में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पहले ही सभी पात्र बच्चों की लाइन लिस्ट तैयार कर ली गई है जिससे प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 2011 से पोलियो वायरस से मुक्त है जो देश की एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी भी बच्चे तक ये दवा नहीं पहुँचती है तो संक्रमण का खतरा बना रह सकता है। पोलियो एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों को जीवन भर के लिए विकलांग बना सकती है, लेकिन समय पर दी गई पोलियो की 2 बूंद इस बीमारी से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से आग्रह किया है कि अब वे अपने 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को 28 जून को निकटतम पल्स पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर जाएं। यदि किसी कारण से बच्चा बूथ तक नहीं पहुंच पाता है तो 29 व 30 जून को घर घर आने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम से उसे पोलियो की दवा अवश्य दिलाएं।
1: अभी आप सामयिक चर्चा सुन रहे थे। विषय था राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026, हिमाचल प्रदेश पूरी तरह तैयार, और वाचक स्वर पूनम शर्मा का था। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी प्रसारित किया जा रहा था। हम
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है। नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटा पारा से गन्नूलाल रजक, KRS, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज बाड़ूदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ूदे और चंद्र प्रभा बाड़ूदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं अलग अलग जगहों से, एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज, ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता, प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किन की पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं, आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे, आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, असद भोपाली के बोल रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो,
0: अब छिपाओ दोराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओहो भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी, दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की।

0: आपने? कहाँ गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूँ। ये सही है, हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना किरकिटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
0: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का जो लेडी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शान से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
0: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
1: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
0: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
1: रियली?
0: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
1: भारती,
0: सिर्फ भारती नहीं, आई एम डॉक्टर भारती। डॉक्टर अदनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है, मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या?
0: अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
0: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
2: तो तुम उन्हें जानती हो?
0: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
2: अब क्या बताऊँ भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए है ना।
0: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
2: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
0: अब मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
2: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
0: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
2: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
0: आई एम सो सॉरी उमा।
2: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
0: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
2: शुक्रिया।
0: मुझे आज्ञा दो।
2: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताक के रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: बुरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहें ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जस्ता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझे अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी?
0: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरासदार रईस कुमार स्वामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है, उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई, मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो ये मत भूलना।
2: हाँ हाँ आप

0: डॉक्टर साहब, 4 दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। ज़रा कह दीजिए, बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देवें।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी, पैसा नहीं है डॉक्टर जी।
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस जादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गई नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक एक करके पूछी ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है, फिर
2: आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
2: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
2: आप नहीं

0: आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
2: डॉक्टर साहब मैं चलूं?
1: हाँ जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
2: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
0: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
0: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं है, मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
0: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
0: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि,
0: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
3: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है, नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
4: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
3: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भर्ती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
4: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
3: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
1: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है।
4: भारती, तुम?
3: अच्छा, तो ये बात है।
4: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
1: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
4: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
1: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
3: सुना आपने?
4: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
3: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त तो हम चले जाते हैं।
4: भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
1: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
4: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
1: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है, आप चिंता छोड़िए मामा जी।
4: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे, सीना दर्द कर रहा है।
1: क्या हुआ मामा जी?
4: पीलो।
1: मामा जी, क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
4: पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है।
1: ले जाइए, ये लीजिए पानी। दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है। मामा जी, एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: हेलो डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो,
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो।

0: दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर।
1: मजाक मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई? जानम्मा
2: जी
1: ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
1: हाँ उमा, मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
0: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
1: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
0: अच्छा अच्छा
1: भाई, दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं। ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
0: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है? तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
1: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं। और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
0: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
1: ऐसे मनहूस देहात मत कहो उमा।
0: तो
1: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ, इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
0: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं।
1: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
0: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
1: हाँ अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
0: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
1: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
0: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
1: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
0: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो?
1: ये बात है, डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
0: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं, मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
1: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
0: वो क्या?
1: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
0: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
1: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
0: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
1: हाँ हाँ जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए
0: हैं?
1: तुम नहीं गई?
0: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
1: ओह अरे कांग्रेचुलेशंस उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
0: चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा, घर में चलो ना नाश्ता करके जाना।
1: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
0: श्योर जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
1: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
0: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गया?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब है, आपको हर बात में मजाक सोचता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ।
4: डॉक्टर

0: डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
1: अरे अरे ये तो बेहोश हो गई, हाय इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
2: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
1: चलो चलो कंपाउंडर,
2: वो बक्स ले आओ जल्दी से।
3: बेटी इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
2: मामा जी मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
3: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
2: मुझे किसी का डर नहीं है।
3: बेटी कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
2: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वह दूसरी है कि वो देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
3: लगता है इसके साथ
2: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गांव से लौट रही थी, बीच रास्ते में 3-4 गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
3: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
2: मामा जी आपने दवा खाई थी, कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
3: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
2: मामा जी अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
3: भारती तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
2: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
3: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
2: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूं, मैंने उसका इलाज किया है।
3: ये ना भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
2: काश मैं मर्द होती।
4: डॉक्टर अम्मा!
2: कोई दरवाजा खटखटा रहा है।
4: डॉक्टर अम्मा!
2: देखती हूँ कौन है।
3: रात के 10 बज चुके हैं।
4: डॉक्टर अम्मा!
2: अरे नानी तुम क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो?
4: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
2: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
4: आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, आप चलकर नहीं देखेंगे तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
2: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
3: जानम्मा अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
4: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आइए डॉक्टर अम्मा
2: जल्दी चलो। नानी आइए चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए डॉक्टरनी, धमकाती है, जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है?
3: अरे भागिए, भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं लेने के तेरे।
2: अरे चल दो, इधर जा, इधर जा।

0: कायर कहीं के छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए, अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
1: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
5: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
4: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम की 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: प्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात, आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हां, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से

0: सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
1: ये 1973 में,
0: ये
1: 1973 में आप
0: 1973 में,
1: हरियाणा से मुंबई आ गए।
0: नहीं मैं हरियाणा से दिल्ली में था,
1: हाँ
0: दिल्ली से मुंबई आया।
1: अच्छा।
0: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहाँ से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी,
1: जी।
0: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी,
1: अच्छा।
0: उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था,
1: अच्छा, तीन दोस्त आए थे
0: तीन
1: आप।
0: दोस्त आए थे,
1: हाँ
0: मेरे दोस्त का वो दोस्त था,
1: अच्छा।
0: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है और उस जगह पे ये नहीं जा सकता,
1: कौन आप?
0: सुधाकर, कि
1: अच्छा,
0: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहाँ कुछ कुछ हो गया
1: अरे
0: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। मैंने कहा
1: अच्छा।
0: भाई आप तो जाइए फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बम्बई में मेरी पहली
1: ओपनिंग
0: रात
1: हुई
0: ओपनिंग
1: आपकी।
0: हुई, दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया। कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी,
1: उस पल को महसूस करते हो जब
0: बिल्कुल
1: आपको
0: याद
1: ऐसा
0: आता
1: किसी ने कहा
0: है,
1: था।
0: याद आता है वो।
1: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए
0: नहीं
1: थे?
0: मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का,
1: अच्छा।
0: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूँ, क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूँगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में और रात को वहाँ खाना खिला के छोड़ देते थे, पूरा
1: अच्छा।
0: खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरेस पे मुझे सोने की जगह देते थे,
1: कोई पैसा नहीं
0: नहीं
1: देते
0: पैसा नहीं देते थे।
1: थे।
0: फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफ़ी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला,
1: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते
0: यही
1: रहे,
0: काम
1: ये
0: करता रहा।
1: संघर्ष जो
0: अब इसको
1: कटता।
0: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था, अब
1: हाँ
0: वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपये रोज के मिलते थे, तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी, तो
1: अच्छा,
0: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं
1: पैसा
0: था,
1: मिल जाता था
0: इतना
1: आपको।
0: पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूज़िक रूम में लेके गए,
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो, तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
1: जी
0: हूँ,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
1: मेरा
0: महबूब।
1: महबूब।

0: माता पिता से बात होती रही क्या? उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे।
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे, तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूँगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है, तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहाँ शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं,
0: आप
1: नहीं,
0: शंकर
1: नहीं।
0: जी के सानिध्य में रहे? कैसे?
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई परेशानी
0: नहीं
1: थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊँ, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ
1: लगभग
0: कविताएं
1: दो
0: रच
1: ढाई
0: ली
1: सौ गीत मैंने लिखे थे।
0: थी? अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था, लेकिन अब शंकर जी जैसे

0: पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी बिट्टी गुम सुनाए क्या,
1: बिल्कुल
0: वो भी समझ गए। और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया
1: अच्छा
0: और कहा कि हसरत मियाँ, ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ।
1: अच्छा
0: ये उनके वर्ड थे।
1: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
0: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफ़ी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें
1: उसमें
0: खुश हो
1: भी
0: जाए।
1: ऊर्जा आ जाती थी, एक
0: हाँ, लगता
1: मोटिवेशन
0: था,
1: मिलता था
0: मोटिवेशन
1: कि
0: होता
1: कभी
0: था
1: हमारा भी ऐसा
0: कि
1: घर
0: कभी हमारा भी होगा।
1: होगा।
0: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी। कुछ लोग आते थे हमेशा, वहाँ का एक अलग ही चलन था। वहाँ एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
1: अच्छा,
0: अब वो पैसे क्यों
1: कौन
0: नहीं,
1: देता
0: कौन
1: था?
0: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
1: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
0: हो
1: साहब के
0: सकता है,
1: प्रति ना, इस
0: हो सकता
1: दीवानगी
0: है,
1: में भी लोग कितना काम कर जाते
0: करते हैं।
1: हैं।
0: तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज़्यादा जाते थे क्योंकि
1: जी
0: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
1: जी
0: को।
1: जी जी
0: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहाँ पे जाते थे।
1: जी
0: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहाँ आइए, तो मैंने वहाँ उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हजरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी ज़िंदगी में आए।
1: जी
0: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हजरत साहब लिखते थे।
1: जी खैर, ये तो
0: कहीं ना
1: आप
0: कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
1: जो हसरत साहब जैसा होगा।
0: उनके जैसा, हो सकता है
1: जी
0: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
1: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
0: जी
1: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना, हसरत
0: जी जी
1: साहब
0: जी
1: को।
0: जी बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर,
0: जी
1: है ना
0: जी
1: सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी ज़िंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का,
1: जी
0: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी,
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफ़ी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं एस्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं।
0: हाँ।
1: तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा। और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था?
1: नहीं,
0: वो कोई और था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
1: जी।
0: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी।
1: जी, जी।
0: तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ।
1: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई।
0: अच्छा।
1: थी। लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
0: अच्छा।
1: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
0: अच्छा।
1: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहाँ से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ। मतलब मेरे ही गीत को उस

0: सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफ़र एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोंपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा।
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है? बोले कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले। मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया।
1: अच्छा
0: जी। और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है, तब तक किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे बहुत शानदार, तो, और लेजेंड से
0: उनका
1: थे वो
0: तो क्या कहना।
1: बहुत सुंदर, आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाकिनी जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी जी,
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं से सीखा। बहुत बहुत, और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहाँ जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
0: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
1: वो फिल्म थी गोरी।
0: गोरी,
1: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
0: अच्छा।
1: विजय त्यागी। उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया, और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया, और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं, क्योंकि फासला काफ़ी हो चुका था।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, तो बोले अच्छा जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पर रखने आया है।
0: अरे
1: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी हैं, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत थे, तो हमने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज़ का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
0: अरे क्या बात है।
1: और उसी में उन्होंने की।
0: ये होते हैं महान संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को, और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही?
1: नहीं
0: था?
1: मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था, और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में, दुल्हन का सच्चा प्यार।
0: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: देखिए आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
0: अच्छा, कौन सा?
1: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की।
0: क्या बात है। ये गीत तो हर एक के दिलो दिमाग में है, और अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए जाते हैं।
1: इस गीत ने मेरी जिंदगी बना दी।
0: अच्छा।
1: मतलब ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ।
0: हाँ।
1: और उसके बाद जो है ना, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया।
0: अच्छा।
1: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊँ, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊँ। तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना, उनके जितने सीरियल

0: थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा
0: हाँ, ओके, लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फ़र्क था,
1: जी
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है। मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
1: डरना
0: का
1: क्या,
0: टाइटल सॉन्ग था,
1: जी,
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: आपको
0: दिया।
1: दिया, हाँ,
0: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो
0: पहली
1: हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी,
0: फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली
1: ठीक है,
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
1: हाँ,
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा,
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
1: हाँ,
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की,
1: नाम की,
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके
1: क्योंकि तुम वो
0: हटके। तो
1: हटके
0: ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मज़ा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे,
1: हाँ,
0: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
1: अच्छा,
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है,
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई। और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बनाई।
1: बन गई।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत
0: ढाला
1: सुंदर
0: है
1: इसमें,
0: और पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है।
1: सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाली,
0: बारीक
1: काम
0: काम
1: किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं
0: बिल्कुल,
1: और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी जी
0: तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए। वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये
0: बहुत खूब
1: ओढ़ली पैंतरा था।
0: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये,
1: जी
0: जिसे
1: जी
0: हर एक को समझना आसान नहीं था।
1: जी जी
0: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत
1: जी
0: से
1: जी
0: में गवाया,
1: जी
0: तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से ये गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी
1: ये
0: कहानी होती है।
1: हाँ, ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में को मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं
0: कुमार
1: वो,
0: सानू के
1: हाँ वो जो हैं बस वही हैं,
0: जी।
1: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, वो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए, बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है। तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा, कौन है म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है, हाँ अच्छा वो करता है, वो करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की,
0: अच्छा
1: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था, मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे

0: कविता जी के घर जाना है। तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो। अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
0: पैंतरा हो
1: खेला।
0: गया।
1: जी
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई। अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी। तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ। तो बोले कि ठीक है, लेकिन अभी तो क्या है, मैं थोड़ी बिजी हूँ, ये है वो। मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी, और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है, तो अभी मिला है। तो बोले नहीं, कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं चुप हो गया। बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या गया, वहाँ से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया। तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई हैं, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
1: उनकी
0: उनका गाना
1: रिकॉर्डिंग
0: है।
1: है।
0: तो मैं सनी में पहुंचा, और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे। तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए। तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला।
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो भी। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
1: अच्छा
0: यार क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं। तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? हमने कहा नहीं, मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही हैं इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं गा
0: सकती।
1: पाएंगी।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फ़ोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा ख़ास है, और कोई बात नहीं, आप मेरा गाना 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी। लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहनशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा, यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती
1: हैं।
0: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है। और वो बात मैं कह नहीं पाया, लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फ़ोन किया। शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज़ आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो लाइन
0: दादा
1: के लिए भी आए।
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी।
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती है ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन
1: बहुत सुंदर थी। और काजोल की आंखें जब एकदम
0: जी
1: हाईलाइट होती हैं उस
0: जी
1: गाने में, और सलमान गाते हैं उनके
0: गाते
1: लिए,
0: हैं
1: बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छा
1: लगता
0: गाते
1: है, बहुत सुंदर।

0: मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा। तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ
1: नहीं
0: करना,
1: है
0: है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी। मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं, अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा। और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पर हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके बहुत सी उसमें जो चीज़ें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब
1: जरूरी
0: जाके
1: है।
0: शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
1: जी जी जी
0: बनाई है, तो
1: जी
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का
1: कॉन्वेंट
0: है।
1: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता। और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही, जब दूसरा गाना हमको मिला तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता। तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके यारा दिल भी मारे झटके। तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
0: हाँ
1: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो, और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर, भले बाद में उसको पता
0: जी,
1: लगे कि ये मेरी
0: सच्चाई
1: बहन की
0: यही है।
1: सच्चाई है,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन पहला उसका जो
0: रिएक्शन आएगा।
1: रिएक्शन आएगा तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके, और भैया को तू खटके।
0: हाँ अच्छा
1: और ये गाना
0: जी
1: कंप्लीट
0: जी
1: हुआ,
0: जी जी
1: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
0: जी
1: हुए।
0: जी

0: खटके।
1: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ आए, वो क्यों आए,
2: क्यों आए
1: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा?
2: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े नाल आएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
1: अच्छा,
2: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था, उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूँ कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ।
1: जी, ये सबसे बड़ी
2: अपनी बात को रखते हुए
1: जी,
2: मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे तो दादी भी नाचेगी।
1: अच्छा,
2: और दादी गाएगी भी।
1: अच्छा,
2: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा।
1: हाँ हाँ।
2: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे। और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा। मुझे एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूँ कि मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे।
1: जी, जी।
2: तो मैंने कहा ठीक है, दादी गाएगी लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया,
1: क्या बात है,
2: और उनको बुलाया। गाना वाना लिखा हुआ नहीं था तब तक।
1: अच्छा,
2: पहले सिंगर तो मिले।
1: हम्म।
2: तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा उसमें। अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है ये सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती हैं। और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं। उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में? और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा? बोले नहीं दादा नहीं, दादी
1: जी।
2: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं, गा रहे हैं, गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
1: जी,
2: यहाँ तक तो दादी गाती है।
1: हाँ।
2: अब लड़का क्या जवाब दे? हाँ। दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।
1: क्या बात है।
2: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा। तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा

0: सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूँ।
1: जी
0: गीत सुनाइए।
1: मैं आपसे यही कहने वाली थी, चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी
1: पसंद का ये गीत फिल्म हमराज से।
0: हमराज।

आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत बस कुछ ही पलों।
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: करने पर चर्चा करेंगे, एक रिपोर्ट।
3: की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फौरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
4: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली MDMK पार्टी ने DMK के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त

ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल के EAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और ज्वेसास जोस्टेन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5:30 हुए हैं। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा मंच में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट एंड दोस्त पूनम, और आप सभी का आज के कार्यक्रम में करती हूं स्वागत। और दोस्तों, आज के इस ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम जो है वो है मेरी पसंद, और साथ में इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे हेलो जीनियस, यानी कि इस कार्यक्रम में हम आपसे कुछ आसान से सवाल पूछेंगे और कुछ पहेलियाँ जो हैं वो इस कार्यक्रम में जो हैं वो हमने आज लेकर आए हैं, और अपने युवा साथियों से, युवा श्रोताओं से जो है वो बात भी करेंगे और उनको सुनाएंगे कुछ खूबसूरत फिल्मी नगमे। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ सभी युवा श्रोताओं का। और दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सीखने की कोई जो सीमा है वो नहीं होती है, और हर दिन हम नया कुछ सीखते हैं, यानी हर दिन नया हमें कुछ सीखने को मिलता है। और इस अपने जो दिमाग के दरवाजे हैं उनको थोड़ा सा खोल लीजिए, क्योंकि अब से लेकर अगले 20 या 25 मिनट तक हम आपसे मनोरंजन और ज्ञान का जो ये शानदार संगम है, इसके लिए तैयार हो जाइए और अपनी सोच को नई उड़ान देने के लिए आज का सफ़र जो है वो सवालों और जवाबों का होगा, और साथ में ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ बात भी करेंगे और खूबसूरत गीत तो आपको ज़रूर सुनवाएंगे। लेकिन अपने युवा श्रोताओं को एक बात बताना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए स्टूडियोज़ का जो नंबर है, नंबर जाना पहचाना सा है, नंबर है 01892224391, और इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो साथ साथ हमारे कुछ आसान से सवाल, हम आपका जो ज्ञान है, हम आपका

0: जो नॉलेज है उसको टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आज के कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए कुछ प्रश्न आपसे जो है हमारे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए, या फिर कुछ आसान सी पहेलियाँ, खूबसूरत सी पहेलियाँ जो कि आपको भी अच्छी लगेंगी, वो आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक कि हमारे कोई श्रोता जो है वो लाइन पर आते हैं, तब तक सुनते हैं एक संदेश।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ युवा साथियों, आपका इंतज़ार हुआ खत्म और एक श्रोता जो थे वो लाइन पर आ चुके थे, लेकिन उनसे हमारी बात जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फ़ोन ट्राई करते रहें और हमसे बातें करें, क्योंकि हम भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। और कॉल मिलाने के लिए हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 01892224391। तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और आज के कार्यक्रम में मेरी पसंद के कुछ गीत जो हैं वो अपने श्रोताओं, अपने युवा साथियों को हम सुनाना चाहेंगे। तो युवा साथियों से गुजारिश रहेगी कि वो हमें फ़ोन करें, हमसे बात करें, और जब तक कि एक कोई और फ़ोन कॉल जो है वो आती है, तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी पसंद, और आज का ये कार्यक्रम सजीव फोन इन है। और हमसे जुड़ने के लिए स्टूडियोज का नंबर एक बार मैं अपने नए युवा श्रोताओं को बताना चाहूंगी। तो हमारा नंबर है 01892224391।

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: मैं शिवांश बोल रहा हूँ,
0: जी? शिवांश कहाँ से बात कर रहे हैं
1: पालमपुर से। हाँ,
0: जी? और बताइए अपने बारे में शिवांश, क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं?
1: जी,
0: कौन सी क्लास में?
1: 9th।
0: 9th क्लास में। तो चलिए शिवांश, आज के कार्यक्रम में आपने कॉल किया है, तो एक छोटा सा प्रश्न, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं।
1: जी
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे पहले श्रोता हैं, तो हमारा हिमाचल जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, ये तो आपको पता है, क्योंकि हम सभी हिमाचल में रहते हैं। तो इसका जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजियार है, उसको किस नाम, प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, जानते हैं आप?
1: जी
0: जी, चलिए मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ जी। हेलो
1: हेलो,
0: जी, बताइए जी। मैं आपको ऑप्शंस भी बता देती हूँ, तो पहाड़ों की रानी, सेब का कटोरा, या फिर मिनी स्विट्जरलैंड।
1: पहाड़ों
0: जी, जो खजियार है उसको किस नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध नाम उसका जो है वो? कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर जो है मैं बता देती हूँ। तो आंसर है मिनी स्विट्जरलैंड। तो कोई बात नहीं शिवांश, आपने हमें कॉल तो किया। और बताइए शिवांश, आपकी क्या हॉबीज़ हैं?
1: बैडमिंटन।
0: बैडमिंटन खेलना है? अरे वाह, और पढ़ाई के साथ साथ बैडमिंटन भी खेलते हैं आप? जी, चलिए। और बताइए कि आपको पढ़ाई में कौन से विषय अच्छे लगते हैं? साइंस अच्छा लगता है, तो आगे जो है वो आप साइंस विषय को ही चूज़ करना चाहेंगे प्लस टू के बाद? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिवांश, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें कॉल किया, हमसे बात की, तो कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया। और इसके बाद आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: 01892224391 और ये है हमारे स्टूडियोज़ का नंबर, तो आप इस नंबर को डायल करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ कर सकते हैं बातें, और हम आपसे कुछ आसान से सवाल पूछेंगे या कोई पहेली पूछेंगे, आपको देना होगा उसका आसान सा जवाब, और साथ में सुनेंगे कुछ खूबसूरत से गीत। तो एक और श्रोता लाइन पर है, तो आइए देखते हैं कि कौन है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं श्रुति बोल रही हूँ लंच से।
0: जी श्रुति, लंच से बात कर रही हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: चलिए श्रुति, तो आपकी कॉल का स्वागत करते हैं, और बताइए श्रुति क्या करती हैं आप?
1: फिलहाल तो मेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है मैम।
0: चलिए बड़ी अच्छी बात है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो है वो भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो है वो हमारे आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रम भी सुन रहे हैं।
1: जी हाँ जी, बिल्कुल।
0: चलिए तो एक आसान सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, पूछ सकती हूँ?
1: जी हाँ जी, जरूर
0: जी। तो आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले को सेब का कटोरा कहा जाता है?
1: शिमला। शिमला।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपने तो एकदम से आंसर दे दिया। तो आज हैं हमारे कार्यक्रम के आप हैं हेलो जीनियस, और श्रुति कुछ और कहना चाहेंगी, कुछ और बताना चाहेंगी अपने बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में?
1: हॉबीज तो यही है मेरी, रीडिंग वगैरह करना ज़्यादा।
0: जी
1: हाँ जी, ज्यादा बुक्स पढ़ना यही पसंद है मैक्सिमम, तो
0: यही
1: क्योंकि अभी फील्ड ही वही है, तो भी ज्यादा और इधर उधर इंटरेस्ट भी नहीं है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप रीडिंग करती हैं, पढ़ाई कर रही हैं, और वैसे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है वो तैयारी कर रही हैं, तो हम तो यही दुआ करेंगे कि आप जल्दी ही जो है वो आप एग्ज़ाम में पास हो जाएं और जो है अपने लक्ष्य को हासिल करें। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस अब आप सुनाइए।
0: चलिए जी, हम तो अच्छे हैं, और तो अब आपको सुनवा रहे हैं आपको अपनी पसंद का एक प्यारा सा गीत, और इंजॉय कीजिए इस गीत को, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: थैंक यू।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो मैडम, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए
1: तानिया बोल रही हूँ, जम्मू से। हाँ
0: जी। सन्या कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: मैडम जी, बस
0: जी। और बताइए अपने बारे में कुछ, क्या करती हैं आप?
1: मैडम जी बच्चे संभालती हूँ अपने, बहुत गर्मी है, गर्मी में बाहर नहीं निकलने देती बच्चों को।
0: चलिए जी, ये तो गर्मी से तो जो है वो बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जो बाहर अगर आप निकलेंगे तो छाता लेकर ज़रूर निकलें, क्योंकि आजकल तेज़ धूप है
1: हाँ
0: जी।
1: मैडम जी, बहुत
0: जी, तो
1: गर्मी
0: जम्मू में
1: है।
0: बारिश भी हो रही है
1: हाँ पहले हो रही थी तो वो अभी बांधता भी नहीं है।
0: जी। तो आज आपने हमारे कार्यक्रम में कॉल किया है, तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, एक पहेली पूछें आपसे?
1: हाँ पूछो मैडम जी।
0: चलिए जी, तो एक पहेली आपसे पूछना चाह रहे हैं, वो है, फलों का मैं राजा कहलाता, गर्मियों में ही मैं हूँ आता, हरा पीला मेरा रंग होता, मीठा मीठा स्वाद है पाता। तो इनसे बात करते करते जो है वो फ़ोन कट चुका है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम इनके फ़ोन कॉल का फिर से इंतज़ार करेंगे, और तब तक सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं सिमरन
0: जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: कांगड़ा से। हाँ
0: कांगड़ा से। सिमरन
1: जी।
0: जी, और बताइए सिमरन, क्या करती हैं आप?
1: हाँ जी हेलो।
0: जी, आप क्या करती हैं, पढ़ाई कर रही हैं या पढ़ चुकी हैं?
1: मैम पढ़ाई कर रही हूँ
0: कौन सी क्लास में?
1: मैम कॉलेज।
0: कॉलेज में हैं
1: हाँ जी
0: जी। कौन से सब्जेक्ट हैं आपके?
1: साइंस मेडिकल।
0: मेडिकल। तो
1: हाँ जी
0: सिमरन, आपने कॉल किया है तो जल्दी से एक पहेली पूछें,
1: हाँ जी मैम।
0: क्योंकि जो हमारे पिछले लिसनर थे जिन्होंने कॉल किया था, उनका फ़ोन कट गया है, तो एक बार फिर से इसी को दोहरा देते हैं। हमारी जो पहेली है वो है, फलों का मैं हूँ राजा कहलाता, गर्मियों में ही मैं हूँ आता, हरा पीला मेरा रंग होता, मीठा मीठा स्वाद है पाता।
1: इसका आंसर तो आम है।
0: जी, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है सिमरन। तो आज के आप हमारे इस कार्यक्रम के आप भी हैं हेलो जीनियस। और बताइए सिमरन, कुछ कहना चाहेंगी?
1: बस मैम, बस मौसम तो गर्मी बड़ी है, बस पंखे के आगे बैठे हैं।
0: जी, गर्मी आजकल बहुत पड़ रही है, लेकिन हमारे धर्मशाला के आसपास थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश की फुहारें भी पड़ रही हैं, और
1: अच्छा
0: हम दुआ करते हैं कि जो कांगड़ा है वहाँ पे भी जो है वो बारिश हो जाए, ताकि आप सबको और हम सबको जो है वो गर्मी से थोड़ी सी निजात मिल सके।
1: हाँ जी मैम। और मैम आपके घर कहाँ है? धर्मशाला।
0: जी, तो
1: अच्छा
0: जी सिमरन, तो कार्यक्रम में आपने कॉल किया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनवा रहे हैं आपको एक प्यारा सा गीत।
1: हाँ जी मैम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। यह आकाशवाणी का अधर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजा गराइंदियां। आज का ये कार्यक्रम जो है वो सजीव फोनिंग रहेगा। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 बजे समय रहेा विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। 8:30 पर देशगान सुनवाया जाएगा। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिमदर्शन रिले किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे रिले किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: रविवार है। प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सोलन जिले में कुल 83,836 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि इस कार्य के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
1: जिला सोलन का टारगेट हमारा बच्चों का 83,836 का है और इसके लिए हमने 441 वैक्सीनेशन बूथ पूरे जिले में बनाए हुए हैं और हमारे 6 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहां हम दूसरी स्टेट के साथ जुड़ते हैं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स में हमने विशेष बूथ बनाए हैं ताकि कोई बच्चा जो बाहर जा रहे हैं वो छूट ना जाए और उनको पोलियो की दवा मिल जाए।
0: प्रदेश भाजपा ने आज जिला परिषद, बीडीसी और नगर निकायों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव में देरी को लेकर राज्य के अनेक स्थानों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए। शिमला में हुए धरना प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भाग लिया। हर्ष महाजन ने चुनाव में देरी को असंवैधानिक बताया और कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं की गई तो भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी।
2: ये बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनी जिला परिषद मेंबर, चुनी बीडीसी, चुनी कमेटी के मेंबर्स, सबका इन्होंने मजाक उड़ाया और ये कहना कि इनकी भूमिका एक ही दिन की होती है, ये तो मैं समझता सुक्खू जी की बहुत बड़ी भूल है। ये चुनाव नहीं कराए, अब जितनी जल्दी हो सकता है तो एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी।
0: इस दौरान हर्ष महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए तुरंत आईजीएमसी ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार हर्ष महाजन को डिहाइड्रेशन और कम रक्तचाप की समस्या हुई, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य सामान्य है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने आज हमीरपुर के बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू में रोजगार मेले के उद्घाटन अवसर पर बताया कि शिक्षण संस्थानों में नए रोजगारपरक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। राजेश धर्माणी ने युवाओं से अपने कौशल का विकास करने का आह्वान किया और कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि रोजगार मेले में 32 बड़ी कंपनियों की मौजूदगी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। सोलन में चल रहे राष्ट्रीय शूलिनी मेले के दूसरे दिन आज पौराणिक ठोडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए स्थानीय लोगों सहित बड़ी संख्या में पर्यटक भी ठोडा मैदान में मौजूद रहे। इस दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज, रणभेरी की धुन और खिलाड़ियों के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। मेले में आए लोगों ने ठोडा प्रतियोगिता को संस्कृति का प्रतीक बताया।
3: छोटा है हमारा ये कल्चर पूरा।

0: ना हजारों सालों से चलता आ रहा है और ये देव कार्य होता है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें हम ये ठोडा मनाया जाता है और बड़ा धूमधाम से, तो तीर कमान से एक दूसरे को तीर निशाने लगाएंगे। 11-11 प्लेयर होते हैं इसके अंदर, तो उसी हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे, फिर उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देंगे उन्हें।
1: बहुत ही अच्छा प्राण हमारा ये कल्चर है, बहुत ही पुरानी संस्कृति है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 135वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के उरेई समरा सड़क मार्ग पर आज एक कार के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल महिला की अस्पताल में मृत्यु हुई। ये सभी लोग आसपास के गांवों के रहने वाले थे और समरा में एक जातर मेले में भाग लेने जा रहे थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ।

0: पहचान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे वर्मा मलिक ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ। और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्यासे पंछी से, जिसे गाया है मुकेश ने और इस गीत को लिखा है कमर जलालाबादी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

एसयूवी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स, और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।

ऐ दिल किसी को गम है, तुझको अपना गम है, यही क्या कम है। जब तक तेरे दम में दम है, झूम झूम के यूं ही जिए जा। हे वो दिल है जो स...

आंखों से आंखों का तू जाम लिए जा, जुल्फों के साए में आराम लिए जा। हर दिल को

0: एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को। आवाजें थी किशोर कुमार और मन्ना डे की फिल्म थी बेवकूफ।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम की 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां सुनने वाले सारे श्रोतियां जो सारे किसान बागवान भाई भैणा जो ग्राम सेवक दी राम राम कने किसान साथी अज टियाले पर मेरे कने न देर उताई तो देर उताई तुहानू भी राम राम
1: राम राम ग्राम सेवक जी कने कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां सुना करदे सारे ही किसान बागवान कने सारे जितने भी श्रोता न तिन्हां जो भी मेरी तरफा ते दो हाथ जोड़ी करे राम राम कने भाई साढ़े जितने भी श्रोता न सै देखा भाई अजकल खेती बाड़ी दे कम्मे काज लगे न
0: जी बिल्कुल
1: कने भाई संजय दी थकी आंदे है ना जी
0: जी जी थकी आंदे पर है कि टियाले पर आई के सारी थकान जड़ी है सै दूर हो जांदी और खास कर दूर अज इयां भी होनी है साढ़े किसान भाइयों की थकान दूर इयां भी होनी है कि अज है साड़ा फोन इन कार्यक्रम है ना
1: जी
0: और फरमाइशी लोक गीतां पर आधारित फोन इन कार्यक्रम है अज का साड़ा कने साढ़े श्रोते साढ़े किसान बागवान भाई भैन सानू फोन करी सकते हैं साढ़े टियाले का फोन नंबर है 0182-224-392
1: जी
0: इस नंबर पर फोन करके अपनी पसंद का जड़ा सै लोक गीत सुनी सकते हैं अहाँ लोक गीत जड़े सै अहाँ दसी देने कि कौन कौन लोग गायक जड़े सै साढ़े अल अज हैं तो देरों ताई तुहां दसा
1: जी अज जड़े लोग गायक साढ़े अन सैन वर्षा गटोच नसीम बाला राजेंद्र कुमार व साथी धीरज शर्मा निकेश कुमार ओम प्रकाश सुनील राणा इन लोग गीत लोग गायकों के लोग गीत जड़े हैं साढ़े जितने भी श्रोता हैं से अपनी फरमाइश कने सुनी सकते हैं तो साढ़े टियाले पर जी श्रोता फोन करा करते हैं तो लेंदे इन्हों की फोन कॉल कने सुनते हैं जी इन्हों की क्या फरमाइश है
0: जी हेलो हेलो
2: हाँ जी सर नमस्कार
0: जी नमस्कार जी स्वागत है थोड़ा कार्यक्रम च कौन साहब बोला दे
2: मैं राजू बोला जी
0: राजू जी
2: हाँ जी सर
0: कुत्थों ते बोला दे जी
2: मैं इस टाइम डाढ़ चौक ते बोला सर
0: अच्छा डाढ़ चौक ते जी स्वागत है ता तुहां दसी ता कि अज कौन दे लोक गायक दा गीत सुनना है जी तुहां
2: बरसा कटोच दा सुनाए सर
0: अच्छा जी तुहां जो बरसा कटोच दा लोक गीत तहां सुनाना है पर तुहां ये दसा भी तुहां करदे क्या
2: सर मेरी इत्थे दुकान है
0: अच्छा जी खेती बाड़ी भी करदे दुकान भी है जी दुकान क्या दी है
2: ये बुटीक है सर
0: अच्छा बहुत बढ़िया जी चलो व्यवसाय

0: व्यवसाय जेड़ा ऐसा कोई भी आवे ना अहाँ करी
1: हाँ जी हाँ
0: सकते
1: जी
0: कने
1: हाँ जी
0: खेती बाड़ी, तो देखा संजा ब्यागा भी यहाँ बड़े आरामे ने खेती बाड़ी कर देन, कने करे दे सारे लोग मिली जुली के खेती बाड़ी का काम कर देने ना
1: सर।
0: जी। ता तोड़िया पसंदा पर अहाँ तो अंजो सुना कर देने प्यारा दिया लोकगीत।
1: धन्यवाद जी।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हेलो।
6: हेलो, नमस्ते जी।
5: नमस्कार जी, कौन बोला दे अन कने कुथु ते बोला दे अन?
6: जी मैं पिंटू बोला जी, बलोली ते जी।
5: पिंटू जी, तुहांदा कार्यक्रम च बहुत बहुत स्वागत है। कने देखो भाई, आज कुन दे लोग गायक दा लोक गीत सुनना चाहेंगे तुहां?
6: सुनील राणा दा सुनाई नहीं जी।
5: सुनील राणा दा, अच्छा जी।
7: पिंटू जी क्या कर दे तो हाँ?

0: जी मैं लकड़ी का काम करता जी, कने
1: अच्छा
0: वेल्डिंग का काम करता।
1: कारपेंटर दा भी काम करते, कने वेल्डिंग दा भी काम
0: वेल्ड
1: करते,
0: हाँ जी हाँ
1: कने कने रेडियो भी सुनते रहते हैं ना
0: जी, रेडियो भी सुनते
1: जी। कौन कौन कार्यक्रम तो जो खरे लगते, कने सारे सुनते हो?
0: जी रेडियो मतलब सारे कार्यक्रम ठीक ही लगते जी।
1: अच्छा चलो जी,
0: हाँ
1: बड़ी
0: जी
1: अच्छी गल है। तो वहाँ दुकाना भी काम करते रहते, कने कने कने जड़ा ऐसा है काम भी करते रहते, रेडियो भी सुनते रहते हैं ना
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी। तो पिंटू जी लिया तुहाड़ी फरमाइश पर, अहाँ तुहानू जो सुना कर देना ये प्यारा दिया लोक गीत।
2: कने कार्यक्रम
0: थैंक
2: तो
0: यू जी,
2: फोन किया जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम जी।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम च
1: नमस्कार सर जी।
0: जी। कौन साहब बोल रहे थे?
1: मैं ज्वाली से बोला सर जी, जरनैल सिंह।
0: जरनैल सिंह जी ज्वाली ते स्वागत है जी थोड़ा कार्यक्रम च। कहने अज जड़ा ऐसे कौन दिया लोक गायक दा गीत जड़ा ऐसे तुम सुनना चाहेंगे
1: हेलो
0: जी। लोक लोक गायक दा कौन दिया गीत सुनना है जी तुम अज?
1: ये बरछा बोबो का गीत सुनना तो मेरे अल बुढ़िया ना बैठी
0: अच्छा जी चलो बड़ी बाकी गल है
1: ता
0: जी।
1: गोलियां रुला दी
0: अच्छा
1: कुल सुननी है।
0: अच्छा बुढ़िया दा क्या क्या नाम है जी इन्हां दा?
1: ओ ना बड़ा बरे,
0: अच्छा
1: ये गल नहीं
0: चलो।
1: कर।

0: ठीक है जी,
1: सर,
0: चलो कोई गल नहीं, गल जी
1: शर्मा जी
0: कर
1: ने
0: देना
1: बना
0: है
1: ली।
0: साढ़े वास्ते।
1: जी
0: यही बड़ा है कि साढ़े कार्यक्रम जो पसंद करते ने सुनते ने ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो क्या करते तो हाँ
1: मैं सर शेर डीपू नूरपुर लकड़िया ना बांध से रिटायर हूँ, कॉरपोरेशन
0: अच्छा जी, चलो बड़ी बात की गल है
1: में
0: जी। अच्छा जी,
1: विदाउट
0: अच्छा
1: पेंशन।
0: अच्छा जी, अच्छा तू हाँ रिटायर आदमी यानी कने रेडियो सुनते रहते हैं ना जी।
1: हाँ जी सर,
0: अच्छा, खेती बाड़ी भी कर दे।
1: हाँ खेती बाड़ी भी करते सर, बांदर साने को 2,000
0: अच्छा
1: डंगरिया का कोई साफ नहीं।
0: हाँ, चलो ये समस्याएं जड़ियाँ से थोड़ियाँ ज़्यादा ने, लेकिन फिर भी साड़ा किसान जड़ा ऐसे हार नहीं मनता है ना जी,
1: हाँ जी,
0: कहने अपने बाड़ू सगाड़ू जड़ा ऐसे लगाई रखदा जी।
1: हाँ यार भाई ने हम आते ले थोड़ी देर
0: चलो जी, ता इबे क्या क्या बाया जी, बाया की
1: सुधा
0: बाना है
1: जरी
0: अभी।
1: भाई हो थोड़ी देर केले भाई ओवर केले सा क्या बोलते छाने बजाया पंदा नहीं आ ये बदल नहीं पड़कता सर
0: जी,
1: तब फोके बेगिंदे
0: हाँ फोके पे
1: तब
0: अंदे ना
1: बोलते
0: जी।
1: निकेते भाई क्यों ये 20 जुलाई का पहले बने
0: जी
1: जरा
0: जी
1: थोड़ी। हाँ जी
0: जी
1: सर,
0: तो चलो ठीक है जी, तो हाँ बड़ी अच्छी गल है कि दिखा इतने सारे लोग जड़े से इकट्ठे हुई के बैठे हो, कने साढ़े कार्यक्रम जो सुना करते हैं ना, कने
1: हाँ जी
0: कार्यक्रम जो
1: सर,
0: पसंद
1: मेरे
0: पसंद
1: तो
0: कर
1: कुछ
0: रहे
1: दस
0: जी।
1: बुढ़िया बैठी अम्मा कने भाभियां
0: अच्छा जी, चलो बड़ी बात
1: कने
0: की
1: बोलना परछा बोबो का गाना सुनना रुला दे कुल।
0: जी। चलो जी, रुलां दी कुल जड़ा ऐसा हाँ, ये इस दी एक लोक गाय लोक गीत हो रहा है बगदी रावी दे विच है ना ये
1: हाँ
0: भी।
1: जी सर,
0: हाँ
1: रेत नहीं हो ठीक
0: हाँ तो ये लोक गीत हाँ थोड़े
1: है।
0: तक
1: ठीक है
0: पहुँचा
1: सर,
0: कर दे है ना जी।
1: ठीक है सर, ओके सर,
0: जी, सुना जी अपनी पसंद आए प्यारा दया लोक गीत।
1: ठीक है सर, धन्यवाद।

0: अच्छा जी, पप्पू राम जी कुंडे लोग गायक दा लोक गीत सुनना चाहेंगे तो? हाँ
1: कौन कौन है?
0: जी, साढ़े आल बचे नसीम बाला, राजेंद्र कुमार, धीरज शर्मा, निकेश कुमार, ओम प्रकाश, और आदे लोक गीत बचे हैं तो हम कुछ दे लोक गायक दा सुनना चाहेंगे लोक गीत। क्या
1: बेस्ट सुनाई दे,
0: बोल रहे थे जी?
1: नरेश
0: निकेश,
1: दा, नरेश दा, मुकेश
0: निकेश दा।
1: दा। जी
0: अच्छा जी
2: ठीक है जी। पप्पू जी तुहां जो अहां लोक गीत सुना कर दे ना,
1: जी
2: पर तुहाड़े पास मौसम कदे आए बै?
1: हाले भाई रोज बरखा हो रही है,
2: अच्छा जी, रोज़ बरखा हो रही है तो इसका मतलब तुहाड़े पास ठंड हो ही होनी थोड़ी है ना।
1: ठंड बरखा होती है, ठंड हो जाती है, धुप लगी पौंदी, गर्मी लगी है, गर्मी लगी पौंदी।
2: चलो बढ़िया जी। मोर्च जड़ा ऐसा बड़ी ज्यादा ठंडा इलाका है, लोग घूमना भी जाते उस पास है ना जी?
1: बड़े ज्यादा होंगे, बड़े ज्यादा होंगे,
2: अच्छा चलो ठीक है जी।
1: वाटरफॉल है ना ऊपर तो बड़े ज्यादा होंगे।
2: अच्छा चलो, बड़ी बांकी गल है जी। तुहां साड़ा कार्यक्रम जड़ा ऐसा हर वरी सुनते हैं, कने हर वरी तुहां सानू फोन भी करते हैं, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। कने थोड़ी पसंद पर सुना कर देना तो ये प्यारा दिया लोकगीत।
1: ठीक है सर, धन्यवाद।

0: एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार जी। हेलो, तू है ना अपना रेडियो जड़ा से थोड़ा दूर करने हो। हेलो
2: जी, लगता है इन्हां दा फोन कॉल जड़ा से कटोई है। अहां गुजारिश करनी है अपने श्रोतियां ते कि भई जल्लू भी सांझो फोन करना है तो अपना रेडियो सेट जड़ा ऐसा थोड़ा दिया दूर रखना है ता जे अहां भी ठीक तरह ने गलबात करी सकन, कने साढ़े श्रोता भी अपनी गलबात जड़ा ऐसे साढ़े ने ठीक तरह ने साझा करी सकन, है ना।
0: हेलो,
1: जी। नमस्कार,
0: नमस्कार जी।
1: मैं कृष्ण चौहान बोल रहा हूँ सिंहपुर से।
0: किशन चौहान जी, तुहाडा कार्यक्रम च बहुत बहुत स्वागत है। कन्ने तुहां दसने जी, तुहां कौन दे लोग गायक दा लोक गीत सुनना चाहेंगे?
1: धीरज शर्मा दा।
0: धीरे शर्मा और दा जी।
2: जी, कृष्ण जी क्या कर दे तसा?
1: मैं टेलर दा काम करदा।
2: टेलर दा काम कर दे, कने कने कने रेडियो भी लगाई रख दे होने, पूरा दिन सुन दे होने,
1: हाँ,
2: है ना जी।
1: लग गया जी। तो
2: वाह जी वाह। कौन कौन कार्यक्रम तो जो खरे लग दे?
1: सारा दिन सुनते रहते, सारे प्रोग्राम अच्छे होंगे।
2: अच्छा जी, सब ते बढ़िया प्रोग्राम कौन दे लगदा तो जो?
1: बस पहाड़ी प्रोग्राम बिहार जेड़ा
2: वाह
1: होंगे।
2: जी वाह, चलो बड़ी बाकी गल है जी। पहाड़ी प्रोग्राम जो तो हाँ खास पसंद कर देने, कहने कृष्ण जी तुहाड़ी पसंद पर अहां तो अंजो सुना कर देने धीरज जी शर्मा और आंदा ये प्यारा त्या लोकगीत।

0: भाई इसी लोक गीत कने देर होताई दिखा हुन घड़ी दी सुइयां सांझ उठने दा इशारा करा कर दी है ना
1: जी।
0: ता जाने ते पहले दस दिए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर और कार्यक्रम प्रस्तुति जितेंद्र पाल सिंह। हुण असा अपने किसान बागवान भाई भैणा ते लैंदे ने अनुमति।
1: अच्छा जी, जय हिंद, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से 1 दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे ही किसान कने बागवान साथियों जो मेरी तरफ ते राम राम कने आज ट्याले पर मिंजो कने ग्राम सेवक जी ग्राम सेवक जी तुसा जो भी राम राम
2: जी राम राम देरो ताई राम राम कने सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई भैणा जो श्रोतियां जो सारे जो एक बारी फ्री ग्राम सेवक दी राम राम कने ट्याले पर हाजिर हो चुके ना हाँ एक बारी फ्री ढेर सारी जानकारियां मीठे मीठे प्यारे प्यारे लोक गीत ले करी है ना
1: जी।
2: ता कार्यक्रम दी जड़ी शुरुआत ऐसा ता देखा देरो ताई यहां कर देना अज दी गलबात ते पर अजकल तो हाँ दिखा दे बई दो तीन दिन ते जड़ा ऐसे थोड़ी गर्मियां बधी गई कने मौसम जड़ा ऐसा उपर पहाड़ा पहाड़ा चा बरखा की फंड दे याद है ना पर निचले क्षेत्र जड़ा ऐसा हल्की फुल्की छिटपुट हुआ करती कने गर्मी फिरी भी जनी जड़ी ऐसे नहीं घटा करती है
1: जी। कने साढ़े जड़े किसान भाई हैं सह इस वक्त पट्टियां जड़ा साढ़ा उपरली क्षेत्र है तिथु धान लगे लाना है ना जी
2: जी
1: कने जोरा पे कदी खड्डे जा दे कुल्ला लो दे बन्नी करी है ना जी कने कदी इक्की आरे ले आ दे कदी दूजे आरे ले आ दे अजकल साढ़े ये जड़ा साढ़ा उपला क्षेत्र इस ये काम धान दा चले कने निचले क्षेत्र च ता साढ़े किसान बेचारे कुछ ऐसे भी हैं जिथू जे बरखा होगी तो तेरा धान लाने ना जी,
2: जी,
1: जी। बरखा का इंतजार होआ करदा है ना जी
2: इंतजार होआ करदा निचले क्षेत्र च कने मियां कई बारी तो इं लगा था जिस हिसाब ने मौसम जड़ा अंबर बिगड़ा था ना मौसम बिगड़ा था उस हिसाब ने तो यह लगा था कि भाई खरी बरखा होनी है पर यह कि थोड़ी हवा ने जड़ा ऐसा उड़ी आ दी है ना
1: जी।
2: तो उम्मीद करनी है कि आने वाले कुछ दिनों च जड़ा ऐसा एक दो जुलाई तक मौसम विभाग भी बोला करता भी मानसून जड़े से इतू पुजी आने ने कने साढ़े किसान भाई जड़े से आरामे ने अपनी खेती जड़ी से टाइमे पर करी लैनी है
1: जी। तेने खेती ये नहीं गल जुड़ी है कि भाई जल भी हाँ खेती बाड़ी करनी है तो असा सही बीजा का चुनाव जड़ा से करना है ना जी
2: बिल्कुल
1: क्योंकि अगर हाँ सही बीज लगाएंगे तो ही साड़ी फसल जड़ी है सही होनी है ना जी क्योंकि इतनी मेहनत असा करनी है ना हूँ धाना की गल ले इतनी मेहनत करनी है हाँ चिकड़े च तो अगर हाँ ठीक बीज नहीं होंगे तो फिर से मेहनत भी जाए हो जानी
2: जी बिल्कुल ठीक लाया तो हाँ क्योंकि दिखा अगर कोई भी फसल है तो इसकी अगर हाँ अच्छी पैदावार लेनी है कने तो इसकी भरपूर पैदावार लेनी है ना तो इस वास्ते बिल्कुल सही गलाया तो हाँ कि बीज का जड़ा ऐसा सही चुनाव होना बड़ा जरूरी है
1: जी क्योंकि दिखा हर क्षेत्र की अपनी जलवायु है ना जी तो असाइयों जिस जलवायु वास्ते जो बीज प्रमाणित ने सही बीज जोड़े से बना चाहिए हैं है ना जी यानी कि गर्म इलाके च ठंडे इलाके वाले बीज लाए थे ठंडे इलाके च गर्म इलाके वाले बीज लगाए थे तो इसने भी साड़ी पैदावार जी है प्रभावित होंगी
2: बिल्कुल कने दिखा एक गल और देर होता है कि कोई भी बीज लगाने से पहले ना हर तीन चार साल च अपने खेत की मिट्टी की जाँच भी जी ऐसा जरूर करवाई लेना चाहिए है इससे लगता पता कि बई कौन दे जड़ा ऐसा इस पोषक तत्व हैं कौन दे बीज जड़े से अच्छी फसल दे सकते
1: जी बिल्कुल कने दिखा कने जालू भी अहाँ बीज खरीदने हैं तो हाँ सरकारी कृषि केंद्र जोड़े होंगे कृषि विश्वविद्यालय हैं कने लाइसेंस डीलर जड़े हैं तिन्हते जाए के अहें बीज जड़े से खरीदना चाहिए
2: जी बिल्कुल तो हाँ ठीक लाया क्योंकि बीज खरीदना भी एक जड़ा ऐसा बड़ी मायने रख

0: बड़ी महत्वपूर्ण गल है। और एक गल होर है देरोताई की, दिखा हुण मौसम जिहड़ा ऐसा खरीफ दा चल रहा, यानी कि बरसात दा चल रहा ना, तां असां जो खरीफ दे बीज ही लगाना चाहिए है ना, और रबी या फिर सर्दियों के मौसम च सर्दी दे बीज ही लगाना चाहिए, या फिर जायदे या गर्मी च जिहड़ा ऐसे अहां यो गर्मी दे बीज ही लगाना चाहिए। अगर अहां बदली के बीज लगाएंगे, उन गर्मियां दे बीज उन बरसाती लाएंगे तो ऐसा नहीं होने कामयाब,
1: जी
0: या
1: बिल्कुल
0: सर्दियां दे बीज लगा देंगे तो ऐसा भी नहीं होने कामयाब। तब बीज भी जड़ा ऐसा मौसम के आधार पर ही लगाने चाहिए ना।
1: जी, कन्ने दिक्खा भई ग्राम सेवक जी गल्ला बातां असां होर भी करनियां भई दिक्खा सन जदी ये साढ़े किसान भैणां जड़ियां ना दिक्खा भई पट्टियां ते आए के हुण रसोई लगियां ने है
0: जी
1: ना,
0: जी जी जी
1: तां
0: मैं
1: हुण
0: थोड़ा
1: थकामा भी
0: इशारा समझ
1: लग्गिया है ना
0: गया।
1: भई,
0: जी,
1: तां असां इन्हां दा थकामा भी दूर करना ताकि काम करदी बार दिन पता नहीं चले हाँ भई पट्टियां च दोपहर जो इतना भारी काम है कितने है ना जी।
0: जी बिल्कुल, तां मैं थोड़ा इशारा समझी गया। हाँ, सुनदे ने एक प्यारा दिया लोक भजन है ना,
1: जी
0: फिरी जड़ा ऐसा अगली कार्रवाई करनी है।
1: जी

0: फसल बीमा का।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच आहां करने गद्दी भाई जुड़ा कर दे न कर दे न इना करने गलबात। राम राम जी।
5: राम राम जी।
4: जी अपना नाम दसा पहले ता।
5: मेरा नाम साणू है जी।
4: साणू जी कुतुन तो हां दे कर
5: साडे घर जी चुरा है सनवाल।
4: चंबे दे कितनी दूर है ये चुरा?
5: ए 100 किलोमीटर है जी।
4: ता भेड्डा बकरियां पाल दे न?
5: हां जी।
4: किन्ना के साल होई ये भेड्डा बकरियां पाल दे?
5: ए होई ये जी कोई 25 साल।
4: अच्छा 25 साल तो हाँ, यानी कि जंगला में ही गुजारी हड़े है ना?
5: हाँ जी हाँ जी।
4: तो इस वेले जियाँ तो हाँ आजकल ये तो हाँ निचले क्षेत्र बिच आए हो ना?
5: हाँ जी।
4: तो जियाँ तो हाँ किन्ने के टाइम कटना इन इलाकियाँ बिच जियाँ
5: गर्मी? इन इलाकियाँ बिच जी असी टाइम कटना बिसाखी तो कर। हाँ जी।
4: नजारा ही जरा सा अलग है। मैं तो जो जरा सा बोली की जरा सा दस्ती सकता छेलमोड़ ने जरा तो हाँ बनाया इसी के बोल दे
5: इसी ओड़ा बना बोल दे जी।
4: अप्पू बनाया तो हाँ है?
5: अप्पू बनाया है जी।
4: तो जी तो हाँ दस या 500 पेड़ बकरियाँ ना?
5: हाँ जी।
4: ता कल्ले चगान दे ना? या
5: 3 बंदे ने जी।
4: जी तो हाँ ना हाँ गल कर दे ना जी या जल तो थू ते चले है चुरा ते इत्थी यो।
5: हाँ जी।
4: ता जी या इन इलाके बिच पुजने किन्ने के दिन लगी जाते?
5: इतू पुजने जो जी कोई 15 दिन लगी जाते। हाँ जी
4: जी। जियाँ 500 दसिया तो हाँ इस भेडा कितनियाँ बकरियाँ कितनियाँ ने?
5: भेडा जी कोई 60 है तो बाकी बकरियाँ 400-400 बकरियाँ।
4: अच्छा जियाँ भेडा की गल करते हैं तो भेडा की जियाँ ऊन वगैरह भी निकाल दे?
5: हाँ जी।
4: साले की कितनी बारी हो जाती?
5: 3 बारी कतरते हैं जी।
4: फिर ऊना का क्या करना है सारा? बिकी जाती है ऊन? ये कुछ जाएगी बिकती?
5: ए शाहपुर बिकी जाती है जी। पर अपने घर से आई जाते हैं लेने बाद से भी ले जाते हैं जी।
4: अच्छा जी ऊन तो हाँ कतरी ले ही है?
5: हाँ जी।
4: इसके बाद क्या करना है? ये धोनी है पहले?
5: नहीं धोते जी ये उदे कति लेंदे ना चांडी चूंटी के तो चूंटी के फिर ये पहले चूंटनी पौंदी है फिर ये कतनी पैंदी है फिर उनसानी पैंदी है ता फिर जी खड्डी वा कोई बुनार दिखना है कने बुनानी है फिर।
4: बड़ी मेहनत वाला काम है?
5: बड़ा मेहनत वाला काम है जी।
4: अच्छा तो जियाँ बकरियों की गल करते हैं इस टाइम सूईया बकरियां कुछ?
5: हाँ जी सूई दी है।
4: दूध निकाल लेंदे होने?
5: हाँ जी हाँ जी।
4: ज्यादातर तो दूध बकरियां दा पींदे होने?
5: बकरियां दा जी।
4: हाँ तो देखा भाई जियाँ बोलते भी है ना कि बकरी जड़ी से 22 जड़ी बूटियां खाती जंगले विच।
5: हाँ जी हाँ जी।
4: कने इसा दूध 22 बीमारियां जड़ा सा कटदा है?
5: कटदा है जी।
4: है ना?
5: हाँ जी।
4: अच्छा तो देखा बकरी का दूध बड़ा इसी यहां बोलते ने कि दवाई दा काम करदा है?
5: हाँ जी हाँ जी।
4: अच्छा जी तुम दसिया कि बैसाखी के बाद तो हाँ हौला हौला जरा सा ठंडे इलाके चढ़ी जाना ना?
5: हाँ जी हाँ जी।
4: तो जी आने तो 15-20 दिन लगते जाने भी 15-20 दिन ही लगने?
5: हाँ जी हाँ जी। फिर नहीं तो आस्ते आस्ते चली भी रहेंगे बता टाइम कट दे।
4: और दसा अपने जी अपने इलाके बिच उतो तो खेती बाड़ी भी करते होने?
5: हाँ जी घरे गए तो खेती बाड़ी भी करते हैं जी।
4: क्या क्या करते उतो?
5: उतो जी कुकड़ी बाते हैं फिर कने कणक।
4: अच्छा
5: जाओ
4: इस टाइम क्या लगे तो हाँ उतो
5: कणक है जी तो कने जाओ।
4: बाकी राजमा वगैरह नहीं बीज दे?
5: राजमा जी बिसाखी का बाद बाद राजमा हुए कुकड़ी हुई बिसाखी के बाद। अच्छा जी तो जेड़े ए मटर है तो मटर का सीजन चलता है जी।
4: हाँ जी
5: ये भादरो महीने चलता है जी।
4: साणू जी जी हाँ तुहान जिक्र किया ना कि चंबे तो हाँ उतु चुरा जरा सा अपने इलाके फसल वगैरह बीज दें उतु तो जी खेत जी सीढ़ी नुमा होंगे जी बड़ी बड़िया बीड़ा होंगे कने उच्चे उच्चे है ना?
5: हाँ जी बड़िया बड़िया बीड़ा होंगी है जी।
4: बैला ना बांधे होने ना?
5: हाँ जी हाँ जी।
4: दो दांत रखे होंगे एक
5: दो।
4: बाकी तो हाँ दे घर कदे होंगे तो लकड़ी दे होंगे?
5: पहले जी लकड़ियां दे कोठे होंगे थे कने अबे जरा लेंटर लगी पिए पाना कने बंगले लगी पिए बनाना।
4: हाँ जी ओला ओला जमाना बदलवा करता था ना?
5: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
4: अच्छा साणू जी गलबात होवा करदी भेड़ बकरी पालन दी।
5: हाँ जी
4: सरकार

0: ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਐਸੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੇੜ ਪਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਦੇ
1: पहले मिलता था जी, अबे नहीं मिलता है कुछ भी।
0: ਪਹਿਲਾਂ
1: पहले
0: ਕਿਆ
1: मिलता
0: ਮਿਲਦਾ
1: था,
0: ਹਾਂ
1: पहले जी बूट मिली जाते थे, वर्दी मिली जाती थी जी, टार्चा मिली जाती थी, पूरी पर्सनालिटी मिलती थी जी,
0: ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ
1: मुफ्त मिलता था जी।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ
1: ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾ, ਟੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਨੇ ਝੋਲੂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਜੀ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਲੂ ਤੁਹਾਂ ਇਥੋਂ ਤੇ ਜਲੂ ਤੁਹਾਂ ਹਟਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਧਾਰਕੰਡੀ ਸਾਈਡ ਕੁਛ ਇੱਕ ਤਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਕਨਾ ਇਹਦੇ ਵਗੈਰਾ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਹਿ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਹਿ
1: से जी असी बोलते उन्हें कि ना बिचराड़ू,
0: ਅੱਛਾ
1: अपनी बोली बिच बिचराड़ू दस दे उन्हें कि,
0: ਹਾਂ ਜੀ
1: पर जेड़े इतनी दे लोग है वो चिचड़ बोलते वो पेई जाते ना उन्हें कि,
0: ਹਾਂ ਜੀ
1: कने उदे बिच दुआई पाते डाकदार टैंक बनाए दे होंगे उन्हें बिच नहाई लिए तो चिचड़ खत्म हो जाते।
0: अच्छा सही, यानी कि सरकार बनाए होने ना।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: कि पैसे लेंदे है नुआने दे?
1: नहीं जी नहीं लेंदे।
0: अच्छा जान दी बारी है ना।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो इसके बाद जो उपचार हो जाना ना।
1: हाँ जी,
0: तो सर फुहारा हों कि तला हों नुआने वाला?
1: मैं तो जी कभी नुआई भी नहीं, मेरी थोड़ी तेई भेडा होंगी है, पर लोग नुआंदे गलां दे टैंक होंदा।
0: अच्छा टैंके च फेंकी देनी है कहते ना, परले बाहर निकली जाना ना।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा उइयां अगर नुआनियां होंदा तो हां कियां नुआंदे ने? जियां ऊन गर्म होंदी ने, बड़ी गर्मी होंदी भेडें जलू धुप्पां पौंदियां, तां
1: फिर नवाई लेंदे जी ना कि कुछ जहाँ तक डिब्बर दिखनी पैंदी है,
0: हाँ
1: जहाँ तक कुछ ऊंची जगह का फुहारा हुआ लग गया था उ
0: अच्छा।
1: जाई के नवानी पैंदी है।
0: सानू जी जियां जंगलों में रहना कल्ले रहना कुछ सड़कों च चलना इतना जड़ा सह तो हाँ तां तां जड़ा सह घूमना कुछ जड़ा सह कुछ डर वगैरह तो नहीं लगता कुछ?
1: अबे नहीं लगता जी, पहले शुरू शुरू बिच लगता था, कने अबे नहीं लगता कोई डर भी।
0: अच्छा जी तुम दस्या
1: हाँ
0: कि
1: जी
0: 25-30 साल चार दे हुई
1: हाँ
0: है ना,
1: जी हाँ जी हाँ जी।
0: बाकी और तो नहीं खतरा जल तो हाँ चंबे दे थी होना या जाना रस्ते बिच कुछ ऐसा कुछ जी कोई चोर पे जन्दे पे डाई हो?
1: पहले पहनते थे जी, कने अबे से भी बेचारे जरा मुखी एक ही दे, क्या पता
0: हाँ
1: बंद हो ही है देन से चोर भी अभी।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: अच्छा अच्छा चलो दिखा भाई गरीब जेड़े से किसान होंगे जियाँ कुनी बकरियां पालियां भेडा पालियां तो चल कुछ योदे शरारती तत्व कोई शरारत करते हैं तो बेचारे की पूरी साले की कमाई जड़ी से मिट्टी हो जाती है ना।
1: मिट्टी हो जाती है
0: हाँ
1: जी,
0: तिना पल्ले जेड़ा से कुछ भी नहीं पौंदा।
1: जाड़े बिच खरड़ोई के कपड़ा वो ढंड नहीं रहिंदा जी कोई भी ऊपर,
0: हाँ
1: तो फिर
0: जी तुहां दस्या 7 महीने घरे ते आए हुई है तो जाना कलू घर आना?
1: हुण विसाखी के बाद जाना है जी।
0: अच्छा जियाँ पुआल रखे होंगे भेडा चारने वास्ते है ना,
1: हाँ जी
0: जियाँ कुछ का माता माल है या कोई जी नौकर रखी जिस यहाँ बोलिए कि एक नौकरी नौकरी पर बंदा रखी लिया ना,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तेने क्या हिसाब किताब देंगे?
1: तिना की जी साले दी 10 भी दें दे, 12 भी दें दे।
0: अच्छा बकरियाँ सह मालक देनी है कि तिनी आपू तालनी है कुण दे लैनी है?
1: ना ना मालके ने देनी है जी,
0: अच्छा तीन मालक दे ही दें तेन कर दे कि छोटी छोटी 10 दई तीन कि हिसाब भी देंगे है?
1: ना ना हिसाब भी ये दें दे जी। हाँ
0: अच्छा
1: जी,
0: हाँ बाकी कपड़े होइए या रोटियां राटियां तीन ही?
1: तिना दिया हुंदिया रोटियां भी ते कपड़े भी ते सब कुछ तिना दा हुंदा है जी।
0: अच्छा हाँ
1: हाँ
0: उन्हें तो
1: जी
0: दिखा भी यहाँ बोला देने कि साल लिया 10 भेडा बकरियां या कुछ भी है पर
1: जी
0: साल
1: जी
0: भी
1: जी
0: दिखा 365 दिन कढ़ना भी कोई आसान काम नहीं है ना,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी
0: चलो
1: बिल्कुल जी।
0: बरखा पौनिया या धुप्पा पौनिया
1: हाँ जी,
0: बना बिच किले रहना है ना।
1: तो कोई कोई नहीं भी देंदा, फिर कोई कोई बेईमान भी होंदा,
0: अच्छा
1: कोई कोई ठगी भी जांदा, सारे एको ही दुनिया भी नहीं है ना।
0: हाँ ये इं बोली तारा कि इबे थोड़ा मुझे नुकसान हो गया माल घट है कने तू अगले साल ले लिया ना।
1: ना तिया तो कोई नहीं बोलता, पर आखी दस ही के कोई कोई फिर दबका भी मारी देंदा है ना।
0: अच्छा भाई तू हाँ चली जा हूँ भाई मैं
1: हाँ
0: तो हाँ नहीं रखने होना ना
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो तीन भी दिखा दुख तो अंजो ने तो नहीं ऐसा कदी हो यार?
1: ना जी ना साढ़े कने तो
0: अच्छा
1: नहीं हुआ, पर कई आंदी सुनी लेंदे ना तो जी फिर दुख लगी जाता दिले बिच।
0: बाकी राशन पानी कितना कितना लेके चलते तो हाँ सोगी थोड़ा थोड़ा इतना चकोई भी आ गा ना।
1: हाँ जी थोड़ा थोड़ा लेंदे न जी,
0: अच्छा
1: अब इस टाइम तो जी हर जगह तो मिली जाता है, जिथे जिथे जाना उतना ही मिली जाता है जी।
0: अच्छा बाकी जी चलो तो हाँ माल बेचना है
1: हाँ जी,
0: ता कुछ हाबे साले च बेचते या 6 महीने बाद कियां
1: चलिए रहती है जी, आई चलिए रहती है।
0: जल जरूरत पेगी ये
1: हाँ
0: ना।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ
0: अच्छा
1: जी, 12 महीने
0: कई क्या होंगे कि कोई जी बीमारी शुमारी लगी जाती तो सभी माल बेचना पी जाता ना तो तुहां जो कदिया लगता कि जी जल तुहां निचले इलाके चले आए जो गर्म इलाकों बिच इतों की जड़ी जी जी बनस्पति है भेडा बकरी वास्ते ये ठीक होंगी कि जी उपर चंबे भरमौर दी है सह?
1: ए जी रित रितपुर है ना रित, अबे इतना ही रित है तो अबे हमारा दिल इतना ही लगी है गया था जी,
0: हाँ
1: तो
0: नहीं
1: जिस टाइम असी फिर बैसाखी जे लगी पौनी है जी तो

0: साढ़ा दिल ऊपर जाई रहिंदा था, माले दा भी ऊपर जाई रहिंदा
1: हाँ
0: फिर
1: नहीं नहीं का
0: माल नहीं
1: पतराए की गल
0: खड़ना।
1: करा करदा मैं।
0: हाँ जी
1: नहीं यहाँ सुनिया कि जड़ा उपर भरमोर चंबे दा जड़ा जड़े जड़ी बूटियां ने का पतरा है ताकतवर होंदा।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: हाँ तीस चकने इससे फर्क होंदा कुछ?
0: बड़ा फर्क है जी,
1: अच्छा
0: बड़ा फर्क।
1: ता सानू जी जियां दिखा हाँ दिखदे न कि अजकल ना तन जड़े है ना जिसे बोलते
0: हाँ जी
1: बड़े घटते जा दे,
0: हाँ जी, बड़े कटते जा रहे
1: क्योंकि
0: जी।
1: गां वाले जड़े युवा साथी हैं ना इसी कम करने से थोड़ी शर्म महसूस करते, कन जड़े बेचारे बुजुर्ग हे थे ना हिम्मत रखी जो पर सभी जिया होले होले गां कुसी दा साथ नहीं मिलला तो सभी इसी कम जड़ा सा छड्डा करदे ना ना। तो
0: ये
1: हाँ उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि जिन्हें अपने धन धन माल है भी कुछ तरीके का ना काम करना करना अपने माँ प्यो का साथ देना।
0: जी माल चारने वाले जेड़े हैं ये बहुत, यहाँ तो अपना माल बहुत अच्छी चीज है जी,
1: हाँ जी
0: इसमें कोई वो नहीं है जी,
1: हाँ जी
0: कमाई है इसमें भी बहुत कमाई है जी,
1: हाँ जी
0: पर कोई करे तो।
1: अच्छा
0: हाँ जी, ते जैसे एक फौजी की ड्यूटी है
1: हाँ जी
0: वैसी गद्दी की भी ड्यूटी है जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: नहीं
1: हाँ
0: गद्दी को छुट्टी मिलती है
1: हाँ जी
0: नहीं जी फौजी को
1: अच्छा
0: छुट्टी मिलती है।
1: अच्छा
0: हाँ जी, वैसे
1: हाँ
0: पैसा बहुत है जी, पर नहाने धोने के लिए भी गद्दी को
1: हाँ
0: टाइम नहीं मिलता है, ये कठिनाई है जी।
1: अच्छा
0: जब इन नीचनू क्षेत्रों में आते हैं जी, जिया थल्ले आउंदे हैं ना जी असि, तिया इस इलाके बिच फिर जरा डाई बनने की दिक्कत पड़ी जाती, कने कपड़े फटी जाते, नहाने
1: हाँ
0: धोने की टाइम नहीं मिलता,
1: हाँ
0: से जरा जी दिक्कत। बाकी इसमें भी बहुत अच्छी कमाई है जी, बुरी कमाई नहीं है,
1: अच्छा। हाँ देखा भाई अपना कम है
0: खूने परसीने की अपनी कमाई है जी।
1: कुसी का रोब नहीं
0: नहीं जी
1: है ना जल दिलकता तो छड़ी दिया
0: बिल्कुल जी
1: बनी पाइया है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो यानी कि तुहां दा ते ना क्या संदेश है भाई कैसा कि कुछ तरीके करना काम करना भाई।
0: से जैसे कि जी अवे जे असी जिया ले ले दिए, अवे जिया असी चारा देन जी,
1: हाँ
0: तिया होर भी कोई चारे लेन ना, तो
1: हाँ जी
0: इस चीज भी जी घाटा नहीं है जी,
1: कन अपना कम है ना ना
0: अपना कम है, नहीं कुसे दी गुलामी है, नहीं कोई कुसे दा लेना है, ना कोई देना है जी,
1: हाँ कन अगर तुहां वाला अपनी विरासत है तो
0: विरासत
1: हमारे
0: है जी।
1: बुजुर्ग अगर माल सेड़िया
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: तीना जड़ा सा सहयोग जड़ा सा करा
0: बिल्कुल
1: है
0: जी
1: ना जी। साणु जी तुहां अपने भेड़ बकरी पालन दे अनुभव अहां कन्ने साझा किते अपना कीमती समय तो अहां जो दिता तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: किसान कने बागवान साथी ये सुनी तुहां एक भेड़ पालक कने कीती गलबात कने फिरी चलना असा मौसम दी जानकारी दी तरफ ता गल करदे सारे ते पहले धर्मशाला दे तापमान दे गल ता धर्मशाला दा जेड़ा ज्यादा ते ज्यादा तापमान रे सिरे 34 डिग्री सेल्सियस कने घट ते घट रे 19 डिग्री सेल्सियस। चंबा च अधिकतम तापमान रे 34 डिग्री सेल्सियस कने घट ते घट रे 21 डिग्री सेल्सियस। कुल्लू रे ज़्यादा तो ज़्यादा 36 डिग्री सेल्सियस कने घट तो घट 20 डिग्री सेल्सियस। सुंदरनगर का ज़्यादा तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस कने घट तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस कने ऊना का अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस कने न्यूनतम तापमान रहा 23 डिग्री सेल्सियस। कने शिमला च अधिकतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस कने घट तो घट रहा 16 डिग्री सेल्सियस। कने आने वाले अगले 24 घंटे च कई जगह च जड़ी छोटी मोटी बारिश कने हवा दी जड़ी संभावना से बनी हुई है। कने देखा
0: जी
2: भई आना हाँ टियाले पर फिरी
0: जी
2: चलना है
0: जी
2: लोक झनकार दी तरफ कने सुनना एक प्यारा दिया लोकगीत
0: जी बिल्कुल, ता सुन देने प्यारा दिया लोग।
2: जी।

0: जी देर उताई तो देखा कितना बांका कितना प्यारा लोकगीत था है ना जी
1: जी
0: कने देखा इसी लोकगीत कने जड़ा ऐसा साढ़े कार्यक्रम दस में इतु ही संपन्न हुआ करता है। जाने ते पहले दस दिए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर और कार्यक्रम प्रस्तुति जितेंद्र पाल सिंह
1: कने हुण अपने ट्याले दे साथियों जो दिया अनुमति।
0: अच्छा।

0: इस कार्यक्रम दे प्रायोजक थे कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:42 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद।

0: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जाए।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का किया ऐलान। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाने की घोषणा। पोलियो रविवार के तहत कल प्रदेश में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की खुराक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान जीते चुनाव। राज्य सरकार पर जनादेश का अपमान करने का लगाया आरोप। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 800 किलो चेरी व प्लम की निर्यात खेप को ओमान के लिए किया रवाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया है। उन्होंने आज बड़ा बंगाल में लोगों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा बंगाल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाए जाएंगे और बच्चों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को बड़ा बंगाल को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगाए गए राजमाह पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेगी। कल पोलियो रविवार है। प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सोलन जिला में कुल 83,836 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि इस कार्य के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
1: जिला सोलन का टारगेट हमारा बच्चों का 83,836 का है और इसके लिए हमने 441 वैक्सीनेशन बूथ पूरे जिले में बनाए हुए हैं और हमारे 6 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहां हम दूसरी स्टेट के साथ जुड़ते हैं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स में हमने विशेष बूथ बनाए हैं ताकि कोई बच्चा जो बाहर जा रहे हैं वो छूट ना जाए और उनको पोलियो की दवा मिल जाए।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान चुनाव जीते हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकायों में भी भाजपा का दबदबा है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर जिला परिषद, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव टाल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनादेश का अपमान करने वाले अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है और भाजपा इस बारे में सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेगी।
2: नगर परिषद में 26 में से 18 में अभी तक चुनाव कराए गए हैं। ब्लॉक समिति में हिमाचल प्रदेश में 92 में से 47 जगह चुनाव करवाए गए हैं और उसमें 31 जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई और 16 जगह कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन अभी तक भी जहां बहुमत भारतीय जनता पार्टी का वहां पर भी ब्लॉक समिति के चुनाव को अभी तक डेट नहीं दी गई है। बार बार आग्रह करने के बावजूद डेट नहीं दी। जिला परिषद हिमाचल प्रदेश में 12 है, 12 में से 3 जगह चुनाव अभी तक संपन्न हुआ है और बाकी जगह अभी तक चुनाव की तारीख नहीं दी जा रही।
0: इस बीच प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं व संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को कमजोर करने का

0: युवाओं को सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने आज हमीरपुर के बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू में रोजगार मेले के उद्घाटन अवसर पर बताया कि शिक्षण संस्थानों में नए रोजगार परक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। राजेश धर्माणी ने युवाओं से अपने कौशल का विकास करने का आह्वान किया और कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि रोजगार मेले में 32 बड़ी कंपनियों की मौजूदगी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज चंडीगढ़ से ओमान के लिए चेरी व प्लम की निर्यात खेप को हरी झंडी दिखाकर हवाई मार्ग से रवाना किया। इनमें शिमला जिले के जड़ोल, टिक्कर व बागी क्षेत्र के 6 प्रगतिशील किसानों द्वारा उगाई गई 400 किलो चेरी व 400 किलो प्लम शामिल हैं। जगत सिंह नेगी ने बताया कि हिमाचल ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर कदम बढ़ाए हैं और मध्य पूर्व व खाड़ी के देश हिमाचल के फलों के लिए एक बड़े निर्यात बाजार के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 135वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज चंबा में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। राजीव भारद्वाज ने लोक निर्माण विभाग को 56 सड़क परियोजनाओं की DPR जल्द तैयार करने को कहा। उन्होंने चंबा जिले में विद्युत आपूर्ति नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए चलाई जा रही पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना की प्रगति पर असंतोष जताया और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सांसद ने बताया कि जिले में विद्युत नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश भाजपा ने आज जिला परिषद, BDC और नगर निकायों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव में देरी को लेकर राज्य के अनेक स्थानों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए। शिमला में हुए धरना प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भाग लिया। हर्ष महाजन ने चुनाव में देरी को असंवैधानिक बताया और कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं की गई तो भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी।
1: ये बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनी जिला परिषद मेंबर, चुनी BDC, चुनी कमेटी के मेंबर्स, सबका इन्होंने मजाक उड़ाया। और ये कहना कि इनके भूमिका एक ही दिन की होती है, ये तो मैं समझता सुखू जी की बहुत बड़ी भूल है। ये चुनाव नहीं कराए, अब जितनी जल्दी हो सकता है तो एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी।
0: इस दौरान हर्ष महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए तुरंत IGMC ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार हर्ष महाजन को डिहाइड्रेशन और कम रक्तचाप की समस्या हुई, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य सामान्य है। सोलन में चल रहे राष्ट्रीय शूलिनी मेले के दूसरे दिन आज पौराणिक ठोडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए स्थानीय लोगों सहित बड़ी संख्या में पर्यटक भी ठोडा मैदान में मौजूद रहे। इस दौरान ढोल नगारों की गूंज, रणभेरी की धुन और खिलाड़ियों के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। मेले में आए लोगों ने ठोडा प्रतियोगिता को संस्कृति का प्रतीक बताया।
2: ठोडा है हमारा ये कल्चर पुराना, हजारों सालों से चलता आ रहा है और ये देव कार्य होता है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें हम ये ठोडा मनाया जाता है और बड़ा धूमधाम से तो तीर कमान से एक दूसरे को तीर निशाने लगाएंगे। 11-11 प्लेयर होते हैं इसके अंदर, तो उसी हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे, फिर उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज देंगे उन्हें। बहुत ही अच्छा, हमारा ये कल्चर है, बहुत ही पुरानी संस्कृति है।
0: चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र

0: भरमौर के उरेई समरा सड़क मार्ग पर आज एक कार के खाई में गिरने से चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक घायल महिला की अस्पताल में मृत्यु हुई। ये सभी लोग आसपास के गांवों के रहने वाले थे और समरा में एक जातर मेले में भाग लेने जा रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का किया ऐलान। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाने की घोषणा। पोलियो रविवार के तहत कल प्रदेश में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की खुराक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान जीते चुनाव। राज्य सरकार पर जनादेश का अपमान करने का लगाया आरोप। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 800 किलो चेरी व प्लम की निर्यात खेप को ओमान के लिए किया रवाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए पेश है रोजगार समाचार। जल शक्ति मंडल नालागढ़ द्वारा जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु पैरास्टाफ के विभिन्न पदों को भरने हेतु अंशकालिक अथवा घंटे के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण इस प्रकार से है। पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद, पैरा फिटर के 3 पद और मल्टीपर्पज वर्कर के 25 पद, अर्थात कुल 40 पदों को भरने हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र सहित अपने आवेदन दिनांक 30 जून 2026 साय 5 बजे तक जल शक्ति मंडल नालागढ़ के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। इन पदों हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 साय 5 बजे तक निर्धारित की गई है। उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र जल शक्ति मंडल नालागढ़ के कार्यालय में 30 जून 2026 साय 5 बजे तक जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस, और कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज में ये गजल।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

श्रोता, अगले देश गान से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस रविवार दिनांक 28 जून 2026 को सुबह 9 से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा मधुमेह रोग, कारण, लक्षण और बचाव। और इससे संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अतुल गुप्ता, हार्मोन रोग विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, रविवार दिनांक 28 जून 2026 समय सुबह 9 से 10 बजे तक। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 01892224391। तो फ़ोन करना ना भूलें रविवार दिनांक 28 जून 2026। और सुबह 9 से 10 बजे तक FM 103.4 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: की सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, MSME

0: by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु कैंपगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कैंपगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैंपगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मुज

0: जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मीशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और US ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Shri Ram

0: 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिमदर्शन रिले किया जाएगा।
1: श्रोताओं नमस्कार। साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन के साथ मैं ज्ञान ठाकुर। इस

0: में हम आपको जानकारी देंगे इस सप्ताह हुई मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहले इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी। 1975 के आपातकाल की याद में मनाया गया संविधान हत्या दिवस, प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम आयोजित। मिड डे मील वर्कर्स का शिमला में प्रदर्शन, मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर अफवाहें फैलाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र के नेरी कला में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 टेस्ला MRI और अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 2 महीनों में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑटोमेटेड लैब स्थापित कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है और विकास कार्यों में कोई कमी होने नहीं दी जाएगी।
1: यहाँ विकास बहुत तेजी से होगा। जब से हमारी सरकार आई है, हमने ये प्रयास किया है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो गांव में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस दृष्टिकोण से हमने योजनाओं को स्वरूप देना शुरू किया।
0: राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों को निजी हाथों में सौंपने की कवायद के विरोध में निगम कर्मचारी महासंघ ने धरना प्रदर्शन किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम राम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कुल्लू, मनाली, रोहडू, रामपुर और कसौली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर निगम के होटलों को बंद करने या निजी प्रबंधन को सौंपने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है और BOD की मंजूरी के बिना ही फैसले लिए जा रहे हैं। हुकुमराम ने कहा कि राज्य पर्यटन विकास निगम घाटे में नहीं है।
2: आज प्रदेश सरकार हमारे जो 8 होटल है उन्हें ONM बेसिस पे देने की बात कर रहे हैं। हमारी जो कॉरपोरेशन है वो घाटे में नहीं है। हम इसलिए बात करते हैं कि जब से ये ONM की प्रथा सरकार ने लाई है, ना तो ये BOD में ये पास होके गई है, क्योंकि हमारे जितने भी एजेंडे होते हैं वो BOD ही उसके फैसले लेते हैं, जो कि हमारे HPTDC के हैं। और इन्होंने बीच बीच में हमारी जो बुकिंग है वो भी बंद कर दी है। इसके बावजूद भी हमारे को ये पर्यटन निगम को ये बोलते कि घाटे में जा रहा है। हमने जब से सरकार बनी है हमने कहा कि हमें 50 करोड़ की आवश्यकता है। अगर ये 50 करोड़ अगर आप हमारे दी जाएगी इसकी ग्रांट के तौर पे, तो मेरे को लगता है कि हमारा टूरिज्म फिर से एक बार फिर अच्छी अपनी पटरी पे आ जाएगा।
0: दुनिया भर में 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में 5,000 से अधिक लोगों ने योग दिवस में उत्साह पूर्वक भाग लिया।
3: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हिमाचल प्रदेश के लोगों में उत्साह देखा गया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित योग सत्र में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन योग परंपरा को आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। राज्यपाल ने योग को हर घर तक पहुंचाने की दिशा में प्रयास करने पर बल दिया, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सके। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के 199 देशों में मनाया जाता है।
4: पूरा भारतवर्ष की जो परंपरा है उसको पूरा विश्व अपना रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 189 कंट्रीज में 2014 से ये प्रयास शुरू हुआ। स्वस्थ जो शरीर रहता है, स्वस्थ मन का परिचायक रहता है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने परिवार से लेके समाज से लेके हर घर में योगा का प्राथमिकता दें और हमारी जो परंपरा है वो भी जीवित रहे।
3: रिज मैदान पर आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लंबित व कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश को चंडीगढ़ में उसका 7.19% का वैधानिक हिस्सा प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में एक अतिरिक्त हिमाचल सदन के निर्माण की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कई दशक पहले बना वर्तमान हिमाचल भवन अब राज्य के लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

0: मुख्यमंत्री ने भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड से संबंधित लंबित पड़ी देनदारियों के जल्द निपटारे को लेकर भी विचार विमर्श किया। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी निवारण दिवस को एंटी चिट्टा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा में बताया कि राज्य सरकार ने बीते वर्ष से एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और नशा तस्करी में संलिप्त कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है।
1: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे को लेकर विशेष अभियान चलाया है और वाकाथोन के जरिए, बहुत सारे सेमिनार्स के जरिए और यहाँ तक कि कानून भी जो है बदला गया है हिमाचल, और इसको बड़े सख्ती से किया गया है। पूरे प्रदेश के पंचायतों में मैपिंग की गई है कि कहाँ पर इसका ज्यादा मेनेंस है। इसमें जो है बहुत सारे कदम उठाए गए, खासकर जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिसमें पुलिस विभाग के लोग भी शामिल पाए गए, उन सबके ऊपर कड़ा जो है संज्ञान लेकर कड़े फैसले लिए गए, उनको नौकरियों से भी निकाला गया है। तो हिमाचल प्रदेश में नशे को लेकर सरकार चिंतित है और खाली चिंता ही नहीं बल्कि इसको कैसे मतलब इस मेनेंस को दूर किया जाए उसके लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
0: एक अन्य कार्यक्रम में कार्यकारी मुख्य सचिव के पंत ने बताया कि प्रदेश में भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चिट्टे के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है और इस अभियान में उपायुक्तों की परफॉर्मेंस भी आंकी जाएगी।
2: दो चीजें की जा रही हैं, एक जो भी भर्ती होगी सरकार में, जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। दूसरा ये भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी है उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को उस तरह से नंबर दिए जाएंगे।
0: 25 जून को आपातकाल की याद में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। देश सहित प्रदेश में भी इससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करना है। अपने संदेश में विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र के इस काले दौर की सच्चाई को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना आवश्यक है ताकि वे समझ सकें कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है।
3: 25 जून 1975 को मध्य रात्रि पूरे देश के अंदर जो है वो आपातकाल की घोषणा की गई और राष्ट्रपति द्वारा उसको नोटिफिकेशन कर दी गई थी। आज कांग्रेस पूरे देश भर में लोकतंत्र की बहुत बड़ी बातें कर, लेकिन उनके स्मरण में इस बात को मैं जरूर ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि रातों रात लाखों लोग पूरे देश भर में एक रात को ही जेल की सलाखों के पीछे उस वक्त डाल दिए गए थे।
0: सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को बरसात के नुकसान के लिए भरपूर सहायता दी है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 94,000 से ज्यादा मकान स्वीकृत किए हैं। वे शिमला में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय पर कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेज रही है और उसी के आधार पर केंद्र द्वारा फंड जारी किया जाता है। इस दौरान सुरेश कश्यप ने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की और मनरेगा व एमपी लैड के लंबित कार्यों को एक सप्ताह में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सुरेश कश्यप ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल में बढ़ोतरी या गड़बड़ी संबंधी कुछ एक मामले सामने आए हैं जिनका निपटारा कर दिया गया है।
4: हमारी दिशा की बैठक थी और इसमें हमने लगभग 40 के करीब जो और केंद्र और स्टेट की जो योजनाएं हैं उनका रिव्यू किया। काफी प्रोग्रेस देखने में हमको मिली है। मैंने इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है और अभी से हमको उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।
0: शिमला जिले में रामपुर क्षेत्र के उरमण में एक पिकअप के गहरी खाई में गिर जाने से माँ और बेटे सहित 6 लोगों की मृत्यु हो गई। शिमला पुलिस ने इस हादसे की पुष्टि की है। मृतक आनी तहसील के कुवाणु, रामपुर तहसील के छलटा, पाठ और शरनाल गांव से संबंधित बताए जा रहे हैं। मिडडे मील वर्कर्स ने 22 जून को अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल की। इस दौरान सीटू से संबंधित मिडडे मील वर्कर्स यूनियन ने वेतन बढ़ोतरी, ग्रेच्युटी पेंशन और 12 महीने का वेतन देने जैसी मांगों को लेकर शिमला में टॉलेंट से

0: सचिवालय तक रोष रैली निकाली। इस दौरान मिड डे मील वर्कर्स ने केंद्र व राज्य सरकार पर उनके शोषण का आरोप लगाया। यूनियन की राज्य महासचिव शांति देवी ने मिड डे मील वर्कर्स को हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक 12 महीने का वेतन देने और नियमित करने के लिए नीति बनाने की मांग की है।
1: हमारी मांग ये थी कि हमें हरियाणा की तर्ज पे वेतन दिया जाए और न्यूनतम वेतन में हमें लिया जाए, 25 बच्चों की शर्त को खत्म किया जाए, छुट्टियों का प्रावधान किया जाए, साल में 2 वर्दी दी जाए और मेडिकल सुविधा दी जाए। 3-4 महीने के बाद वेतन दिया जाता है जिससे कि हमारा घर चलाना मुश्किल होता है।
0: यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
2: 2004 से लेकर के ये स्कीम मिड डे मील वर्कर की चली है, तब से इसमें अब तक सरकार ने कोई भी संशोधन नहीं किया है, इसलिए हम ये धरना देने के लिए मजबूर हुए। अगर सरकारें हमारी मांगे नहीं पूरी करती है तो हम आगे और उग्र आंदोलन तैयारियां करेंगे और सरकार का अच्छी तरह से कठोरता से सामना करेंगे।
0: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत देश के विभिन्न हिस्सों से चयनित युवा इन दिनों लाहौल स्पीति जिला के सीमावर्ती गांव के भ्रमण पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है।
3: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चरण 2 के चौथे दिन की शुरुआत युवा ध्यान सत्र से हुई। इससे युवाओं में स्वास्थ्य और सामूहिक सहभागिता की भावना को बढ़ावा मिला। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने लेपचा, लांजा, हिक्किम और कौमी गांव का भ्रमण किया। युवाओं ने यहां की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवन शैली को करीब से जाना। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और माई भारत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका शुक्ला को पत्र लिखकर अपने विचार और आकांक्षाएं भी साझा की। वहीं तीरंदाजी और क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भी युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से सीमांत गांव के युवाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिली।
0: विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकार की जवाबदेही, रोजगार का अधिकार व पारदर्शिता, काम का भुगतान और रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी के प्रावधान हैं और इसके अलावा भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे खत्म हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जी राम जी योजना 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के नाम पर झूठ बोलकर प्रदेश के हितों को दांव पर लगा रही है। जयराम ठाकुर ने सरकार को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की दिशा में कार्य करने की सलाह दी है। इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले कार्यक्रम चित्र भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी

0: देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता हैं उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल है, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को बिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटीज, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैगरोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदुकुश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं
1: जी।
2: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे

0: में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित, जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड, और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे सांस सांस इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
2: जी।
3: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
2: जी,
3: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
2: जी।
3: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण।

0: भूमिका
1: इस कार्यक्रम ने निभाई।
0: मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
0: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
0: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
0: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है। जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।

0: है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बात जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9 महीने 10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं। भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
1: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की। उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ। उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
2: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम पोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान

0: स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंपटीशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर, फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुँचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होके अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
2: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन

को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रो ग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुक करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन अर्थात ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह

0: प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by Prabhat Mukhopadhyay. He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11 बजने को है कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी

0: परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The Ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defence Minister's remarks, the Ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media.